FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 37 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: अब से ठीक बाद यानी 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 पर भी होंगे और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:45 पर। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर होंगे गाने नए तराने नए। इसके अलावा 6:05 पर और शाम 7:30 पर फिल्म संगीत होगा और हिंदी फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप हमारे केंद्र से सुन सकेंगे शाम 8:15 पर। दर्द भरे गीत होंगे रात 9 बजे। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5 बजे और महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी होगा 5:30 पर। राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर 6:20 पर होगा और किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7 बजे। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे और समाचार संध्या 8:45 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुबह के 9 बजने को है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा रैली से होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। श्री मोदी मेधावी छात्रों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित परम प्रज्ञा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच आने को लेकर उत्साहित हैं। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पंचायत राज और नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार अब आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू करेगी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 और राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
1: हमारे किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती देने के लिए ये राजस्थान एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर फल सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दूध, पशु आहार, इन सभी की इकाइयों को मजबूती मिलेगी। इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे और सप्लाई चेन भी स्थापित करी जाएगी। उसी के साथ राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 भी लाएगी, जिसके अंदर फूड पार्कों को मजबूती दी जाएगी, उसके लिए भूमि आवंटित की जाएगी और उसका संचालन के अलग अलग श्रेणी बनाई गई है।
0: मंत्रिमंडल ने मजदूरी संहिता नियम 2026 को भी स्वीकृत किया है। इसके तहत श्रमिकों के काम के घंटे तय किए गए हैं, साथ ही उनका महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार संशोधित होगा। प्रदेश में ईकेवाईसी नहीं कराने वाले करीब 27 लोगों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इससे पात्र और जरूरतमंद परिवारों को योजना का फायदा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। नवम्बर 2024 में शुरू किए गए गिवअप अभियान के तहत करीब 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ छोड़ा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राज्यों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग भविष्य की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कल इंदौर में पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की 13वीं बैठक में ये बात कही। इस दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान पुलिस के साइबर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की जानकारी भी साझा की। बैठक में अंतर्राज्यीय अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। साथ ही गुमशुदा बच्चों की तलाश, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक और तकनीक आधारित पुलिसिंग सहित अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की जोजुड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव

करेंगे। इसमें पर्यावरण, वन, जल संसाधन और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति नदियों में हो रहे प्रदूषण की लगातार समीक्षा करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन नदियों का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। कई जगहों पर फैक्ट्रियों का गंदा पानी अवैध रूप से नदियों में छोड़ा जा रहा है। इससे नदी, पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा शिकायत तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया है जिससे लोग नदी प्रदूषण या पर्यावरण से जुड़े मामलों की आसानी से शिकायत कर सकें और उन पर जल्द कार्रवाई हो सके। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिसर और रेलगाड़ियों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर जुलाई माह में 269 लोगों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 38 स्टेशनों और 231 ट्रेनों में जांच कर

0: स्मोकर को पकड़ा जा रहा है। तो सभी यात्रियों से, सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रेलवे सबकी कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसके सेफ और सिक्योर संचालन में सभी लोग सहयोग करें और धूम्रपान किसी भी परिस्थिति में रेलवे परिसर में और ट्रेन में ना करें।
1: प्रदेश में कल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कल सभी जिलों में तिरंगा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा, वहीं 11 और 12 अगस्त को तिरंगा प्रदर्शनी और मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का नेतृत्व करेंगे। ये रैली सुबह 9:30 बजे अल्बर्ट हॉल से रवाना होकर चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाएगी। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रैली से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में हो रही बरसात से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। राज्य के पूर्वी इलाकों में बरसात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भरतपुर में अत्यधिक बरसात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज का अवकाश घोषित किया है। हनुमानगढ़ में सुबह से ही कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात का दौर बना हुआ है। पाली में बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बरसात हो रही है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही फुहारों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। आज भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं सीकर और झुंझुनू के लिए बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायत निकाय चुनाव और वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने के फैसले सहित कई महत्वपूर्ण फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए। और प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा रैली से होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस, FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं श्रुति शिरोडकर की इस रचना से, सुनते हैं शिव तांडव स्तोत्र।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: वंदना कार्यक्रम में अब सुनते हैं सुरेश वाडेकर की ये भक्ति रचना।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: अब सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं साजों पर धुन। इस कार्यक्रम में हम हिंदी फिल्मी गीतों की धुन सुनते हैं, तो शुरुआत करते हैं इस धुन से, जहां सैक्सोफोन पर सुरेश यादव है।

साजों पर धुन इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म अनाड़ी की गीत का ये धुन। सैक्सोफोन पर है सुरेश यादव।

साजों पर धुन में आप सुनते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत का धुन। वायलिन पर है देवशंकर और ज्योति शंकर।

कार्यक्रम की आखिरी धुन फिल्म कभी कभी से। इसमें पियानो पर है राजीव सिक्का और सैक्सोफोन पर नरेंद्र टॉनी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साजों पर धुन, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं, आप सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। शुरुआत करते हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अगला गीत है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 0।

0: उपेंद्र है 82। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: अगला गीत अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म तेरी कसम से।

आकाशवाणी के नागौर चैनल से अभी आप सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के, और इसमें अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेला का ये गीत।

फिल्म अभिनेत्री में लता मंगेशकर के गाए इसके गीत के साथ ही गाने पुराने जमाने के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है। अब सुनते हैं गाने नए तराने नए। शुरुआत करते हैं फिल्म तमाशा के इस गीत से, जिसमें आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की।

अगला गीत फिल्म कपूर सन्स से अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज़ में।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से भी आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए। अगले गीत को लिया है हमने फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म से। आवाजें अरिजीत सिंह, सिमरनजीत कौर और अनीता भट्ट की है।

गाने नए तराने नए में अगला गीत वीरे की वेडिंग, इस फिल्म का गीत मीका सिंह की आवाज़ में सुनते हैं।

ये गीत था फिल्म लाली की शादी में लड्डू दीवाना फिल्म का। आवाज़ें थी मोहम्मद इरफान और विपिन पटवा की। इसके साथ ही गाने नए तराने नए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। मैटिनी शो कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमारे साथ थे जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी। क्या शानदार दास्तान उनकी जिंदगी की और कितने अनमोल किस्से। सुशील जी से बातचीत को इस हफ्ते आगे बढ़ाते हैं। यह है दूसरा भाग, बातचीत कर रहा हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान। जब आप कमेंट्री करते रहे और बहुत तनाव भरे मैचेस थे, तो आपने कुछ जुमले गढ़े थे जो लेजेंडरी बन गए हैं, जो मिथक बन चुके हैं, ये किस तरह से आए थे उसकी बात करें।
1: देखिए, एक तो मुझे 1979 का एक सिलसिला याद है कि भारत को जीत के लिए 438 रन आखिरी दिन बनाने थे और भारत 360 रन तक पहुंच गया था एक विकेट पर, और वक्त काफी था, रन बन सकते थे। सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी
0: जी।
1: और उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, ओवल टेस्ट मैच की बात है, सभी को याद होगा। और उस समय हमने देखा कि कुछ बूढ़े किस्म के लोग वापस जा रहे थे मैदान से, तो मैंने फिर अंग्रेजी कमेंटेटर को कहा कि मैं आता हूं दो मिनट जरा पूछ के कि ये लोग छोड़ के रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा भाई हमें दिल की बीमारी है और हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि जब भी इस तरह का कोई रोमांच आए तो मैच छोड़ दीजिए, ये आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
0: अरे बाप रे।
1: तो मैंने ये सोचा कि ये जो बात यहाँ मौजूद है, भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि जिन्हें दिल की बीमारी है शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि इस मैच का रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
0: तो क्या सुंदर बात।
1: तो उस समय जब ये कहा तो ये मुझे पता नहीं था कि ये कैसा रहा होगा, मैंने तो कह दिया। जब वापस आया उसी समय मेरी 3 घंटे बाद ही फ्लाइट थी बंबई की, बंबई आया तो लोगों ने गले लगा लिया मुझे, कि बोले क्या कमेंट्री की आपने, तो धड़कने बढ़ा दी, और लोगों ने इतनी प्रशंसा की। और आज भी लोग याद रखते हैं, देखो 1979 की बात है, तेज रफ्तार जमाना है
0: जी,
1: लोग कल की बात भूल जाते हैं। आज 46 साल पुरानी

0: साल पुरानी बातें हैं, और आजकल तो आज हर मैच में कमेंटेटर लोग जिन्हें दिल की बीमारी है बोलने लगे हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: वो ना तो वो कंपन पैदा कर सकते हैं ना ही वैसा वातावरण पैदा कर सकते हैं, एक यंत्रवत एक कह देते हैं।
1: जी
0: लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने कोई लकीर छोड़ी है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, अच्छी बात है, उस लकीर के ही लिए वो प्रशंसा कर रहे हैं।
1: जी सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: मैं भी नया नया था और मेरे साथ वाले जो सज्जन थे वो भी नए थे, तो वो एक नक्शा लेकर आए थे कि देख रहे थे कि तीन स्लिप एक गली एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर एक्स्ट्रा
1: मिड
0: कवर ऐसा। तो अब उनको ये पता नहीं था कि अगला ओवर जो होगा वो दूसरी तरफ से होगा,
1: बिल्कुल।
0: तो वो नक्शा तो उन्होंने बदला नहीं। तो लाला अमरनाथ हमारे एक्सपर्ट थे, तो
1: जी,
0: जब ओवर कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ से बॉलिंग होने लगी तो उन्होंने कहा, लाला जी ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है? तो लाला अमरनाथ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ये इसको नक्शा वापस सीधा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया, अब बोलिए। तो ये कई इस तरह की घटनाएं भी होती थी,
1: जी,
0: लेकिन कोई बात नहीं, वो सीख के दिन थे, शुरुआती दिन थे। तो कई कमेंटेटर सीख रहे थे और आकाशवाणी ने भी समझा कि क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आवाज तो होनी ही चाहिए, भाषा होनी चाहिए, क्रिकेट का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी एक चीज में कमी हो तो बात अधूरी रह जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में जब आपने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की तो मैंने एक चीज हमेशा जानी है कि पैसे कम मिलते थे और अपनी जेब के खर्च डाल के आप यात्राओं पर जाते रहे,
0: नहीं,
1: लेकिन वो
0: बिल्कुल
1: जुनून कायम रखा।
0: बिल्कुल, पहली कमेंट्री मैंने 15 रुपए दिन में की थी रणजी ट्रॉफी की।
1: ओहो,
0: और जब 1979 में मैं इंग्लैंड गया तो 100 रुपए प्रतिदिन,
1: हाँ,
0: और पाकिस्तान गया तो शायद 100 रुपए प्रतिदिन। पाकिस्तान 1978 और 82 दोनों बार पाकिस्तान गया मैं, और वो यात्रा भी अभूतपूर्व रही। मतलब पाकिस्तान का तो एक मैं कई बार किस्सा बताता भी हूँ
1: जी,
0: कि 1982 की बात है, और हमारे जो मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जो उनका काफ़ी वहाँ पर रुतबा था, सब लोग जानते थे उनको वहाँ पाकिस्तान में। और अब हमारी टीम ने एक पार्टी दी थी पाकिस्तान में, और फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े हुए बाहर सबको रिसीव कर रहे थे, मैं भी था और सुनील गावस्कर साहब भी थे। और अचानक आवाज़ उठी कि वो आ गई, वो आ गई। सबने कहा, भाई कौन आ गई, मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटा यंग था बिल्कुल आपकी
1: जी
0: तरह। मैंने कहा, भाई कौन आ गई, कौन स्टार आ गई। तब देखा एक मिडिल एजेड वुमन वहां पर आई और गायकवाड़ साहब ने परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं और दुनिया इनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, आप तो इनको जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जहीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ। तो गावस्कर साहब को पूछा कि भाई कोई बात नहीं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूर जहां हैं।
1: ओ
0: तो गावस्कर साहब तो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन स्वाभिमान के मामले में बड़े हैं। उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूं।
1: अरे बाप रे,
0: तो ये मैं कभी भूलता नहीं कि
1: मौके पे
0: देखिए
1: चौका।
0: विरोधी मौके पे चौका, आप सही कह रहे हैं। तो आप विदेशी भूमि पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो और वहां पर स्वाभिमान की बात, तो गावस्कर साहब के चरित्र में आज भी यही बात देखने को मिलती है कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में हिचकते नहीं है।
1: क्या बात है, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं। ऐसा ही

0: दुनिया है अंकल जी।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कमेंट्री करते हुए बहुत तनाव भरे पल आते रहे और जब यूं लगा कि मैच जो है वो एक कच्चे धागे से लटका हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसे समय में आपने कहा कि, और ये हमने देखा भी है, आप और पूरी टीम तटस्थ कमेंट्री करती रही, लेकिन अंदर से दिल को क्या महसूस होता रहता था और उसको कैसे बैलेंस करते थे आप?
2: नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दिल तो चाहता है कि भारत जीते
1: जी,
2: और चूंकि आप निष्पक्ष रहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कहती है कि नहीं, और फिर पब्लिक जैसी आवाज आती है ना,
1: हाँ।
2: आप तो रेडियो के खुद ही आवाज है एक मशहूर, तो ये जानते हैं कि पब्लिक की आवाज के ऊपर से आपकी आवाज जानी चाहिए, आपकी आवाज खोनी नहीं चाहिए
1: जी,
2: तो पब्लिक की आवाज के हिसाब से ही आपकी आवाज उतार चढ़ाव होते हैं और पता लग जाता है अनुभव से कि पब्लिक आवाज कैसी आ रही है, सुनाई भी देता है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि ये संतुलन, कि आप सब चीजों के पार जाकर अपने आप को संतुलित करें और एक संतुलित प्रदर्शन करें, जैसे खिलाड़ी करता है ना मुसीबत में, वैसे ही आपकी कमेंट्री का भी ये एक तेजाबी परीक्षण है ये,
1: क्या बात
2: कि आप कैसी कमेंट्री कर रहे हैं। आप बहुत चिल्ला तो नहीं रहे, क्योंकि चिल्लाना भी नहीं चाहिए, आपकी आवाज फट तो नहीं रही, कई आवाज फट जाती है क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो रोमांच है वो इतना बढ़ जाता है कि आप सनसनीखेज आवाज पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आपको संतुलित ढंग से और उसी हिसाब से जितना रोमांच है बस उतना ही परोसे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। एक अच्छे कमेंटेटर की पहचान ऐसे ही क्षणों में होती है।
1: बिल्कुल सही है
3: सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: बहुत संकोच से ये कहना पड़ रहा है और पूछना पड़ रहा है कि मैं आपसे एक कमेंट्री सुनना चाहता हूं, इमेजिनरी कमेंट्री। देखिए, हमारे सुनने वालों में बहुत अलग अलग तरह के उम्र के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने पूरा रेडियो कमेंट्री का दौर देखा है और फिर टेलीविजन आते और फिर रेडियो कमेंट्री को थोड़ा कम होते देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो कमेंट्री का सबसे सुनहरा दौर देखा है और ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुनते रहे, जिसमें लोग पूछते थे भाई साहब स्कोर क्या है, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जनरेशन के बाद के हैं, जिन्होंने ये नहीं सुना है, उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक झलक हम सुन पाए तो अच्छा होगा।
1: नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान पिच पर पहुंच चुके हैं। पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है, 50,000 दर्शकों की मौजूदगी है और मैं जहां भी जा रहा हूं ना, आज होटल की रिसेप्शनिस्ट से लगाकर जो रिक्शा चालक है वो भी एक ही बात कर रहा है कि आज भारत और पाकिस्तान का यह मैच होगा, किस प्रकार, कौन जीतेगा, एक ही चर्चा का विषय है। क्योंकि क्रिकेट का खेल, भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है ना, ये मुकाबला सभी दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का बाप कहा जाता है। तो पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इमरान खान पवेलियन की तरफ से और गावस्कर को वो गेंद करेंगे। जो फील्डिंग की जमावट है वो इस प्रकार है, 3 स्लिप है, एक गली है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है या ऑफ साइड की फील्ड, और ऑन साइड में एक मिड ऑन, मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। 6 फील्डर्स ऑफ साइड में, 3 फील्डर्स ऑन साइड में। इमरान तैयार पवेलियन की तरफ से गेंद कर रहे हैं गावस्कर को, ओवर पिच्ड ऑफ स्टंप पर और गावस्कर आगे आए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चैनल के लिए।
0: गजब गजब गजब, इतना शानदार है कि मेरा मन एकदम झूम उठा। जो सुनने वाले हैं वो भी ताली बजा रहे होंगे और मैं ये पूरा जो आपने ये जो समा बांधा, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतना शानदार दौर याद दिला दिया।
1: बहुत धन्यवाद। और रेडियो के श्रोताओं से बात करके तो मैं हमेशा भावुक रहता हूं, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई है, मेरी पहचान भी यहीं से स्थापित हुई और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया।
0: जी, अभी तो और बातें करेंगे। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, रॉकी फिल्म का गाना सुनते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम।

0: सुशील जी, कमेंट्री का पूरा एक दौर देखा आपने और बहुत अलग अलग तरह के कमेंटेटर्स को सुना, हिंदी के और अंग्रेजी के। आपके बहुत फेवरेट कमेंटेटर्स कौन से रहे हैं?
1: नहीं, देखिए, मैं जॉन अर्नोट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक कवि भी थे, तो
0: जी
1: उनका क्रिकेटिंग नॉलेज उतना नहीं था, लेकिन उनकी भाषा अद्भुत रहती थी। तो एक ही बात मैंने उनसे सीखी कि कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करो, जो कहते हैं ना शब्दों की किफायत, जैसे अंग्रेजी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो जब आप इस तरह की किफायत वापरते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है, सही शब्द सही जगह, तो असरदार शब्द। तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी। और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था, 1979 में जब इंग्लैंड गया तो
0: जी
1: उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा, हर शब्द का एक चित्र होता है।
0: वाह,
1: जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव थ्रू द कवर तो 4 रन, तो इसका मतलब कि उसने हल्के से खेला। और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू दी कवर 4 रन, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है,
0: क्या प्यारी
1: तो
0: बात।
1: ये शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी
0: जी
1: और अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूँ, कई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है, अच्छे इंसान होने का? यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: ये, अन्यथा उम्र आपको मार देगी। तो लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको।
0: क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं? आपका प्रोफेशन क्या रहा है?
1: नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है, देखिए लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है। ये तमाम चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए और वो जिम्मेदारियां भी उसकी है। अगर पिता ने उसके प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हो।
0: जी
1: और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें तो फिर जीवन असफल हो जाता है, लोग आपकी गणना या आपका अंकन ठीक से नहीं करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुतेरी भूमिका। तो मैं अब जैसे शोरूम है हमारा इंदौर में, 150 आदमी काम करते हैं,
0: जी जी
1: जहां एक 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे, और आज 4 शोरूम्स हैं हमारे, कुल
0: जी
1: मिलाकर 150 आदमी काम करते हैं, यहां से वहां तक, और बेदाग, यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। यहां एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी?
1: नहीं, दो बातें मैं जरूर यहां कहना चाहता हूं। एक तो ऑस्ट्रेलिया
0: जी
1: मैं गया था, सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में, और मैं भूलते नहीं कि वहां पर जो कीथ मिलर हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में,
0: जी
1: उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहां ऑस्ट्रेलिया में होकर आ रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो थे ना, जवान लड़के लड़कियां आते थे, कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुंह चला रहा, बहुत तेजी से मुंह चला रहा, ये बातें बड़ी फैल रही थी। और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के, कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय।
0: जी
1: तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं,
0: अरे
1: मेरे
0: बाप
1: तो
0: रे,
1: होश उड़ गए, तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था, तो उम्र
0: जी
1: में
0: जी
1: 29 साल का था। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय, आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड of whatever you said, but whatever went into my ears was very sweet.
0: वाह वाह
1: ये
0: वाह
1: जो
0: वाह वाह
1: मैं समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कमेंट था कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिश्री जैसी आवाज आ रही। और एक और कमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी,
0: इंदौर के,
1: 1936 इंदौर के मुश्ताक अली साहब और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, 1936 में ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया
0: जी,
1: पहले भारतीय, तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट लेकर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए और सुशील दोषी तुमको भेजा है हिंदी की कॉमेंट्री करने के लिए।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: ये बहुत बड़ा कॉमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कॉमेंट जो मुझे कहा आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर जिन्होंने मुझे पहले भगाया था ना,
0: जी जी,
1: उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज़ एक ईमानदार आवाज़ है,
0: अद्भुत।
1: तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाज़ें, मीठी आवाज़, मोटी आवाज़, बच्चन बैरिटोन, पतली आवाज़ है ना, सुरीली आवाज़, लेकिन ये ईमानदार आवाज़ आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना नहीं। तो ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं, तो ये तमाम चीज़ें। और एक किस्सा मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ
0: जी जी,
1: कि वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था हिंदी भाषा की।
0: जी जी जी,
1: फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे और शाम का वक्त था, तो मैंने, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है।
0: आहा हा, तो सुंदर,
1: इतना अच्छा लगा अखबारों में भी छपा के, इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है, जब आप साहित्य पढ़ते हो।
0: जी जी जी,
1: अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते।
0: और उस लेवल पर मैच को महसूस करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
1: सबसे बात बड़ी बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करोगे तो महसूस कराओगे।
0: जी,
1: ये जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे।
0: बिल्कुल सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे।

0: सुशील जी, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन से रहे हैं आपके? नहीं, मैं सुनील गावस्कर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है, तकनीक उनकी अद्भुत, ऐसी तकनीक मैंने किसी की नहीं देखी। बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे पिचेस पर ढकी हुई नहीं है
1: बिल्कुल
0: और बाउंसर्स की कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी, और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बोलर्स दुनिया में थे। आप
1: यस
0: वेस्ट इंडीज में देखे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, यू नो, कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो, है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो टॉम्पसन और लिली, इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे।
1: जी जी
0: उन
1: जी
0: सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर, उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया का को कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया, ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे,
1: जी जी
0: वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को।
1: जी जी और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं?
0: नहीं, विश्व क्रिकेट में जो एक तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन के बड़ा तो कोई रहा ही नहीं, ऐसा जैसा इयान चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे
1: जी
0: मुलाकात जरूर हुई
1: जी
0: लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा,
1: जी
0: लेकिन उनके रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर
1: जी
0: बहुत बड़े बल्लेबाज, वो भी अपने आप में, और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना,
1: वाह वाह
0: अगर
1: वाह
0: किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर,
1: बिल्कुल
0: कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे।
1: जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त आप कहाँ थे और क्या
0: नहीं, उस
1: आप?
0: समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि किसी ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना, ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही ने टिकटें कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल की, वक्त ही उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे।
1: जी
0: तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई उस समय। क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है वो शास्त्रीय क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है।
1: जी
0: बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहना शुरू कर दिया, और
1: जी
0: T10 क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर
1: जी
0: दिया।
1: बिल्कुल कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है।
0: रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना
1: जी
0: सही, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है और परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती हैं, इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं।
1: जी बिल्कुल सुशील जी, बहुत सारी किताबें आपकी हैं और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों देखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं। ये जो लिखने वाला मामला है इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूं।
1: जी
0: मेरा पहला लेख 1966 में छपा था, कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा, और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें, और सबसे मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूं जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो।
1: जी जी
0: तो क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री एक कला के हिसाब से
1: जी
0: लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं,
1: वाह
0: तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ते कम है,
1: जी
0: फिर भी 65,000 कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं।
0: हाँ, करीब 5,000 से ज्यादा लेख और कॉलम्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है।
1: जी
0: ये कॉलम लिखना, उसमें पैसा तो कोई इतना रहता है नहीं, पैसा तो रहता है मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए, इससे पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तुर्रम खां समझें
1: जी
0: और लोग आपको नहीं समझें तो क्या अर्थ है। तो
1: जी
0: ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया भी आप समझें।
1: जी जी आपका अपना एक डिसिप्लिन और आपकी अपनी एक फिटनेस भी एक एनवायरेबल है, उसके बारे में बताइए।
0: नहीं, जीवन में देखिए उत्साह
1: जी,
0: और दूसरी बात, आप जब तक क्रिएटिव हैं यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में हैं तब तक आप जवान हैं। और रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीजों के प्रति प्रशंसा का वही भाव, और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है तब तक मैं अपने आप को काफी स्फूर्तिमान और काफी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीजें करता ही रहता हूं। अभी भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है। तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूं, जो योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो।
1: यहां गाना सुनते हैं हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।

0: आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दें, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी। एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुंच सकता है, तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हो भाई लोगों, आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है। क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है।
0: जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहाँ थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी?
1: नहीं, देखिए 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था।
0: अच्छा।
1: मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है, तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं, वो उनको लगा कि कोई छापा तो नहीं पड़ रहा तो वो घबराया तो मुझे फोन किया, तो मैंने कहा मुझे बात कराइए। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली में था, मैं कमेंट्री कर रहा था
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने
0: जी।
1: और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया
0: जी,
1: भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर इतना प्यार कर रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वाकांक्षा थी
0: जी, जी, जी।
1: महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव
0: जी।
1: पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस, और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी
0: जी, जी
1: उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो उसको अब जीवन में और क्या चाहिए।
0: वाह,
1: देखिए माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बहते रहने का काम है
0: जी। आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए।
1: नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले दोयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में
0: जी,
1: उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है, तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया
0: जी। सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की, आपकी आवाज इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया, मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कॉम्पिटिशन मुझे ही मिले।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी, आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा। जो

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अनगिनत।

आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए

0: कह दो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है।
0: कब आएगा? अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

0: रिश्ते थे ये भीग जाएंगे।
1: दो झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे।

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा,
0: किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम साहिब बहादुर। राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन की तर्ज।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे भूपिंदर सिंह की आवाज फिल्म का नाम मौसम

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में। अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन की तर्ज है। फिल्म का नाम है देश परदेश।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।

0: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
1: अरे ललन मियां आप काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
3: सुनिए
4: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है, कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज वे केवल अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से इस पल को पूरी तरह से जीने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उन्हें परिसर में बिताए समय और यादों की कमी महसूस होगी। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके सफल भविष्य की कामना की। प्रदेश में आगामी पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ में नगर परिषद की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आज विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्र नाम हटाने और विवरण में संशोधन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं पाली में जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्वाचन प्रकोष्ठों को सक्रिय करने और राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लोगों से मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया है। साथ ही लगाए गए पौधों को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है। वे आज बूंदी में सघन पौधरोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल और संरक्षण की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की नीति भी लागू की है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। इससे पहले पुलिस परेड ग्राउंड में अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज भीलवाड़ा के पॉलीटेक्निक कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 10 से 12 अगस्त के दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच भरतपुर के बयाना में भारी बारिश के बाद बांध बारेठा में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध में जलस्तर भराव क्षमता के नजदीक पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग ने कुकुंद नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले करीब 50 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील की गई है। प्रशासन के अनुसार बारिश जारी रहने पर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में अलवर के थानागाजी में सबसे अधिक 93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पिछले 28 कार्य दिवसों में 14 भर्तियों के

0: अंतिम परिणाम जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह ने बताया कि इस अवधि में 11 विचारित सूचियां और साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की 36 सूचियां भी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और उनके समय की अहमियत को समझता है। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता है। जुलाई 2026 से अब तक जारी अंतिम परिणामों में चिकित्सा शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और संस्कृत कॉलेज शिक्षा से जुड़े विभिन्न पद शामिल हैं। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। फिर से सुनते हैं विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि हम भी बातें करते हैं तो गानों का और फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो पूरे दिन कोई ना कोई गाना गाते रहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी गाने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा हमारे अस्तित्व का आईना है, व्याकरण की दृष्टि से भले शुद्ध ना हो। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में गाने तो आजकल मुहावरे की भूमिका अदा करते हैं, जैसे अगर कोई देर से आया तो हम कहते हैं बड़ी देर भाई नंदलाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं हम अभी इसी गाने को सोच रहे थे और ये गाना प्रसारित हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट्स शामिल नहीं होते, इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं। अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, अपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा, उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज है, कहीं दूर से गम आ जाए, रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरीके से इबारत लिख दी है। अब जो गाना आ रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज्यादा करीब गाना है और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री, एक दूजे के लिए। ये फिल्म आपने किस साल में कहां किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं या अभी तक आप गर्मी से जूझ रही हैं? शनिवार की दोपहर 1:12 क्या हाल आपके और आपके शहर के मौसम के?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि एक दूजे के लिए जब रिलीज हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, थिएटर में देखी होगी पर याद नहीं है, लेकिन बाद में टेलीविजन पर देखा। जैसे जैसे बड़े हुए इस फिल्म के गानों का जादू सिर चढ़कर बोला, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज से परिचित हुए और 16 बरस की बाली उम्र से खुद को कनेक्ट किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये गाना दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि मिर्जापुर शहर में जब से सावन का महीना लगा है दिन रात झमाझम बारिश हो रही है, इस समय थोड़े बादल और थोड़ी सी धूप है, खुशनुमा मौसम है हमारे शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुठाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली, सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही है कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है, भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण है। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए, ये बड़ा ही अच्छा लगा था। 1981 में कॉलेज से भागकर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज

भागकर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी? कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था? और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है। फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। ये फिल्म कहाँ, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी, बताइएगा।

एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भागकर देखी है ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का

0: इसकी बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब कर रहे हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखती है कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है, रेशमा की आवाज सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे, पर ये गाना किसका?

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। कमर जलालाबादी ने ये गाना लिखा था, कुछ श्रोताओं ने गुलचन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर जलालाबादी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलालाबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता है जिन्होंने कहा 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज आंखियों के झरोखों से हम किसी से कम नहीं और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं उतनी बारिश हमारे यहाँ हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं। भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका। और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नजारा है और मैं अपने सफर पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि वो अपने सफर में भी विविध भारती को लगातार सुनते चले जा रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है तो मम्मी और पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखा है कि इन सबके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफर करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चित्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराए फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है तो एक और गाना आ रहा है और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय अपनी बात कहिए।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंता की आवाज में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता।

था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे ये जरूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक समाना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं

0: एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माँ ही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफ़ी पहले गतिविधियां शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती है, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था, स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सकें। राष्ट्रगान के पश्चात में वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है, अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं, और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिर लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती हैं कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज़ गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ये क्या हुआ,
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ।
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

0: एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूं ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान, सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी कि कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो हैं ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज, बहू बेगम फिल्म का ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा। मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: त्रिवेणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 8 अगस्त की तारीख कैलेंडर की कोई आम तारीख लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है। भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जारी था जहां महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस तरह से भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान आज भी भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की याद दिलाता है। जन जन में रोष था, आक्रोश था और ऊर्जा थी, बुलंदी थी कि किसी भी तरह से अब देश को आजाद करना ही है। मुंबई से जो लहर शुरू हुई थी उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। अब गांव गांव, शहर शहर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर।

भारत छोड़ो आंदोलन का सिनेमा पर क्या असर पड़ा, इसकी एक मिसाल ये गाना है जो अभी आपने सुना। कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने तलब किया और आरोप लगाया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी गाना है, पर उन्होंने बड़ी चतुराई से तर्क दिया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी नहीं बल्कि ब्रिटिश समर्थक गाना है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। टॉकीजों में फिल्म को रोक रोक कर नौजवान बार बार इस गाने को दिखाने का अनुरोध करते थे। ये गाना जनमानस पर छा गया था। पूरे देश में अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे हों या नौजवान या बुजुर्ग। भारत के कोने कोने से लोग सड़क पर निकल आए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर बस ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना, जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मोल हर पीढ़ी को समझना होगा।

0: संभाल के।
1: कोई भी देश अपनी सीमाओं से नहीं बनता, अपनी ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बनता, अपने इतिहास से भी नहीं बनता। देश बनता है जनमानस से, उसकी जनता से और उसकी जनता की चेतना से। अगर हम सचेत रहें, जागरूक रहें, देश के प्रति जिम्मेदार रहें,

जो हम करें तो देश के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की याद के इस दिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है।

8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और आज त्रिवेणी में हमने आपको याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है और ये आजादी इतनी अनमोल क्यों है। तो अब इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न

0: हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
3: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इपको, क्रिपको, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि

0: बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। SH बिहारी की वो लोपी ने फिल्म है ये रात फिर ना आएगी।

0: खुद से सुनी है, नहीं उदास नहीं बस ये।
1: गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी। एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी हैं आपकी अनगिनत यादें।

आ रहे हैं विविध भारती पर। सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे आप सुन रहे हैं सदाबहार बहते।

मेरे साया फिल्म का यह गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में था। राजा मेहदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज थी।

0: फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। ये गाना अभी आपने सुना और ये आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी,
2: आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाएं।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

कार्यक्रम का अगला गीत जमाने को दिखाना है फिल्म से है और इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती जासमीन और प्रयागराज का खत है और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया मुन्ना भाई सिसोदिया गीताबा सिसोदिया धर्मराज करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और वारंगा फाटा जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे पांडुरंग मोरे अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा, वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहिब नवथर अक्षय चंदन जय कुमार चंदन रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान जब्बार मोहम्मद तजीब खान मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें गीत सावन कुमार संगीत उषा खन्ना।

0: नहीं?
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मनचाही गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहु बेगम फिल्म का गीत सहर लुधियानवी के बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चुड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जाउलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशी से और कबीर रेडियो श्रोत्रा संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार। ये गाना आप सभी की फरमाइश पर, फिल्म का नाम है बहु बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: बाबा कैसे नाटक देखा जाएगा?

0: केशव, ओफो केशव कहाँ चला गया? केशव केशव, वो तीसरी घंटी हो गई और केशव से कहोगी अनाउंस करे। हाँ है ये लेकर कि तुम केशव ठाकर
1: अभी आया पाटिल जी,
0: जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
1: यहाँ
0: केशव कहाँ जा रहे हो? माइक्रोफोन तो ये रहा।
1: सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, माइक रहा ऊंची करो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जनों। हाँ तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शान और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। हाँ सज्जनों, तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: कांता, मान लो कि
1: प्रमोद, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी,
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह, कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सकें ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: करते रहो कि वे सब आ गए। आओ, सब आ जाओ। आज मेरी अर्थी उठ रही है, रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
2: आखिर हुआ क्या कांता?
3: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन?
1: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है। हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे
4: हो? आज यहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
3: अरे प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज, मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
4: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है, इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से, मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
4: मुझसे सुनो मेरी घोषणा। मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा, अलविदा।
0: मुझे विश्वास हो गया है कि...
4: कैसा विश्वास?
0: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
4: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर अटल हूँ।
0: प्रमोद, रुक जाओ।
4: नो,
0: इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल, मुझे दो।
4: कांता, ये पिस्तौल मुझे दो।
1: तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से...
0: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए, पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना अभी इस पिस्तौल से।
1: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता, कांता, मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
0: सर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन?
4: कांता, कांता, तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
2: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
3: हैं? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
2: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
4: कैसे पैसे?
2: ब्लैकमेल के पैसे।
3: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
2: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
3: है?
4: कितने रुपए मांगता है वो?
2: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
4: यहाँ?
2: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है। और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है, तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे, तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
1: प्रमोद, तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा।
4: शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता
0: नहीं। तुम यही रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है। दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
3: कांता, अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
4: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा। तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ। लो वो क्या।
5: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
2: गुड इवनिंग मिस्टर देशपांडे। ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्ना, तुम तो इन्हें मिस्टर देशपांडे को जानती हो।
0: हाँ हाँ।
2: और प्रमोद, कांता, निरंजन, ये हैं मिस्टर देशपांडे, जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
4: आखिर बात क्या है नंदलाल?
2: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे। और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है। इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा, तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
3: नंदलाल, मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे, हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
2: अरे ज्योत्ना, ये क्या कर रही हो?
3: भाभी,
2: ये पिस्तौल असल है,
3: मेरे पास रहने दो।
6: भाभी, ये पिस्तौल मुझे दो।
3: क्या कर रही हो तुम?
6: हट जाओ भाभी। शेखर खोसला, शेखर खोसला।
4: शिखर खोसला कौन था?
6: सीट पे बैठा था वो।
3: अरे भैया, गाली होती है, बैठा था, गोली लगता ही ढेर हो गया।

0: गोली चलने वाली वो एक्ट्रेस कौन सी?
1: अरे वो इतनी मशहूर एक्ट्रेस कामिनी देसाई थी। कामिनी देसाई?
0: कामिनी देसाई?
1: हाँ।
0: अरे अरे अरे अरे वो कांता का रोल जो कर रही थी वही।
2: बोले ना जरूर कोई बात
3: मैं सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
4: आपका नाम, उम्र, काम?
3: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
4: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
5: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
3: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
5: कुछ और?
3: मतलब?
5: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
3: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
5: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या यह भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
3: जी जी हाँ।
5: 15 को ही क्यों?
3: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
5: ये नाटक कब हुआ?
3: पिछले महीने की 1 तारीख को।
5: नाटक का नाम क्या था?
3: किसी एक फूल का नाम लो।
5: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
3: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और
6: केशव ठाकुर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
7: हम दोनों प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए, लेकिन छठे पात्र के लिए कोई नहीं मिल रहा।
3: छठे पात्र के लिए? सुनो, छठे पात्र के लिए केशव ठाकर।
7: केशव ठाकर? वो लेखक?
3: इसमें हंसने की क्या बात है, छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हाँ,
7: सुंदर से पूछ ले।
3: आता ही होगा सुंदर भी। जी, मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना। मुलजिमा कामिनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं। किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामिनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
5: आप दोनों साथ रहते हैं?
3: जी हाँ, मैं, कामिनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
5: तीनों साथ रहते हैं? कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
3: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
5: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
3: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
5: जगन्नाथ पाठक और कामिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
3: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है।
6: सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी?
3: जाहिर है, तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
7: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
3: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
8: सुन लिया कामनी?
3: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
8: तुम मुझे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
9: अरे लगता है प्रीतम

0: भी आ रहा है।
1: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
2: प्रीतम, स्वाति सुनी कहाँ है?
3: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
4: अजी, स्वाति जरूर आई ही ना।
5: सुंदर,
4: अरे पाठक यार, डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, आई सिक।
5: अरे यार, मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला हूँ।
6: जी, मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी, कामनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामनी पाठक के प्यार में।
2: आपने ये कैसे मान लिया?
6: कामनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
2: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
6: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि
2: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
6: जी जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो, ये नहीं माना जा सकता।
2: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और
6: जी
7: मैं स्वाति सोनी हूँ। पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामनी मेरी पक्की सहेली है। लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा। इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
8: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना मिली। क्या ये सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
7: जी हाँ।
8: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
7: जी हाँ।
8: हाँ
7: जी,
8: या ना?
7: जी, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
8: क्या मतलब?
7: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है, और स्त्री का हृदय।
8: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामिनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामिनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
7: मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
8: याद रखिए, आपने हल्फ उठाया है।
7: हाँ, जानती हूँ मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।
8: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
7: जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
8: आप कुछ छुपा रहे हैं।
7: आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप?
9: कामनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
10: सुंदर, तुम बेकार इतनी कड़वाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा एकांत मिलता है।
4: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
10: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
9: लेकिन कोई और जानता है?
4: कोई और जानता है? कौन?
9: केशव ठाकर,
4: वो बुद्धू लेखक।
10: हाँ, वो बुद्धू लेखक, वो मूर्ख बना फिरता है, शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
11: जी, मेरा नाम केशव ठाकर, नहीं मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
8: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
11: जी हाँ, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
8: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
11: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक

0: मुलाकात हो गई थी जी हाँ, वही मुझे अपनी मंडली में ले गया था।
1: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
0: जी हाँ, मैंने लिखा था।
1: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी?
0: जी हाँ।
1: आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
0: वकील साहब, अजी आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
1: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
0: जी
1: मैं पूछ रहा हूं, कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
0: जी हाँ, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
2: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक के रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
0: कुछ नहीं।
3: तुम कामनी को ये दीवानों की तरह घूर रहे?
0: कुछ नहीं, वो जरा
4: आंशस हो गया।
1: अच्छा ठीक है,
5: ये पाठक भी आज कुछ
1: बस आप रिहर्सल शुरू करें। कामनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? इसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो? उससे
6: कह रही हूँ पाठक, क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो?
1: स्टॉप इट।
6: रिहर्सल शुरू करो ना, तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलूं।
1: कांता, मान लो
6: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
1: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
0: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था, और वो मैं खुद था, यानी केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
1: कामिनी भी आपसे प्रेम करती थी?
0: जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था, और अब भी करता हूँ। कामनी की जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ, और जो वो कहे।
1: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
0: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
1: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
0: जी, उसका नाम शेखर खोसला था।
1: सवाल यह है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
0: आज देखे लो कि सब इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है।
1: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
0: किस बात का जवाब?
1: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
0: अजी, इंसान को देखे ना, दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई, हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी, मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
1: बेकार की बात मत कीजिए। अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी, और झूठा जवाब दिया तो जेल।
0: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी, क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी, इतना विद्वान तो मैं नहीं।
1: आप शेखर खोसला को जानते थे?
0: जी,
1: हाँ या ना?
0: जी, कुछ नहीं याद नहीं।
1: याद कीजिए, आपने उसे 1,000 रुपए दिए थे, ये सच है?
0: जी, क्या बात करते हैं वकील साहब। जी, बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1,000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
1: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ, उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
0: जी नहीं।
1: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
0: कुछ नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए।
0: जी, वो जी, मेरी याददाश्त कुछ अच्छी नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1,000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
2: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना, अच्छा तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्रायः रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
4: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
6: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ बॉडम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
4: सच बताओ कामनी।
6: पाठक, कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंटूश को प्यार करती हूँ।
4: नहीं, लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
6: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
4: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
6: धमकी देते हो?
4: सफाई चाहता हूँ।
6: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। शक्की अंधे फूंदू पति की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
4: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
6: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
4: यह चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो मैं उसे छेड़ लूंगा? ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
7: मिस्टर केशव ठाकर
0: जी,
7: क्या सोच रहे हैं बताइए। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
0: जी जी, वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
8: सरदारी वकील अपनी जिरह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
0: जी,
8: शेखर खोसला कौन था?
0: जी जी, कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
8: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
6: जी जी, कैसे समझाऊं आपको? मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात? मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ, या कि शेखर खोसला को नहीं जानती।
8: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
9: जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं।
8: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
9: जी जी, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था, और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
8: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
9: जी, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
10: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।

0: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान, इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका, जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली, वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
1: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
2: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं, और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
2: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
1: जी,
2: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
1: ओके।
2: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमती एकेडमी। मधुमती जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
1: जी,
2: थी
1: जी, जी, बिल्कुल।
2: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहाँ पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में।
1: क्या उम्र होगी वो? लगभग
2: 7th स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे
1: जी।
2: बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम दोनों को बुलाते थे कि आप कॉम्पिटिशन में आ जाओ। तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी
1: जी।
2: मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी।
1: अच्छा।
2: तो जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं।
1: अच्छा।
2: तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए, ट्यूशन देती थी। फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते, तो मधुमती मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा,
2: वहां
1: हाथ
2: पे
1: मिल
2: मैं
1: गया।
2: हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के, उनके जो शौहर थे वो पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को। तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ। एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें, अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है।
1: अच्छा।
2: तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम, अपने साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे, और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो
1: जी।
2: और एक हमारी तरबियत को नहीं भूलना है।
1: क्या बात,
2: अपनी तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बहा रही है, बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं है। जी,
2: बिल्कुल,
1: बहुत बढ़िया बात।
2: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए
1: जी।
2: समेटते हुए आगे बढ़ना है, उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वहाँ से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे, तो गणेश हेगड़े जी
1: जी
2: जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज के कोरियोग्राफर्स हैं,
1: जी
2: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो
1: हाँ,
2: अम्मी
1: तो
2: मेरी हमेशा साथ होती थी
1: अमाउंट के लालच में। आप
2: अमाउंट ये
1: गए।
2: था हाँ कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमती मैम ने हाँ मधुमती मैम ने बोला बेटा करो बुरा नहीं है, अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के,
1: जी जी
2: तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप
2: मुझे
1: उस समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
2: नहीं
1: कर
2: बिल्कुल
1: रही थी
2: नहीं
1: या लीड डांसर्स थे?
2: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ, तो
1: अच्छा
2: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
2: पहले गणेश हेगड़े लॉलीपॉप इन्हीं का ट्रुप चलता था,
1: जी
2: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है,
1: ठीक।
2: उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी जो अभी कोरियोग्राफर है,
1: जी
2: तो पोनी वर्मा ने यू नो शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी, तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
2: हाँ
1: चेहरा अलग
2: तो
1: दिखता है,
2: क्योंकि आप
1: चमकता हो।
2: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
2: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ
1: जी
2: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
2: बचपन
1: हुआ है
2: से,
1: जी।
2: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे,
1: जी
2: तो मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी, मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने
1: अरे
2: अम्मी
1: वाह
2: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
2: काफी
1: एक
2: उस
1: और
2: वक्त।
1: हाथ चाहिए था जी।
2: तो फिर उस तरह से माई मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजंस, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी, तब तक मैं यहाँ पहुंची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
2: स्टिल
1: आप,
2: स्कूल में थी,
1: बहुत
2: तो वो
1: छोटे थे।
2: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया, बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते सीखते सीखते, फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
2: मौका
1: बात है,
2: मिला। फिर एक मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
2: मैं
1: सब
2: काम बहुत बड़ी फैन,
1: है।
2: मतलब मैं
1: मास्टर जी के फैन सब है
2: सब है, जब
1: जी।
2: मैं असिस्टेंट थी उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एकलव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एकलव्य बन गई।
1: क्या बात है।
2: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोज जी समा गए, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए,
1: जी
2: तो वो एक उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एकलव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर, निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
2: बहुत ज्यादा
1: तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है।
2: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी
1: तो
2: फैन हूँ,
1: हमारे विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
2: बहुत। आप जैसे देखो मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो है प्यार दू,
1: क्या
2: गोरी
1: खूबसूरत
2: बैया तो
1: गीत
2: पे
1: है।
2: वार
1: जी
2: दू,
1: जी जी जी
2: एक तो
1: गाइडफिल्म
2: जो
1: का ये गाना
2: अल्फाज
1: जी।
2: जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी
2: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की, आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
1: तो
2: मुझे
1: फिर उनमें से
2: सुकून
1: कोई
2: देते
1: एक
2: हैं।
1: हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
2: एक तो पहले सुनाइए आजा पिया तो है प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो,
1: चलिए
2: उसके बाद
1: जी,
2: हाँ
1: उसके
2: ये
1: बाद की
2: गाना, उसके
1: भी
2: बाद लग जा गले
1: अच्छा
2: के फिर ये हंसी रात हो ना हो।
1: बड़ी बड़ी ऐसी फरमाइश है आपकी, पर हम आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है आजा पिया तो है प्यार दूं, गाइड
2: प्लीज
1: फिल्म का गाना है,
2: प्लीज
1: सुनते हैं ये गीत।
2: प्लीज सुनाइए।

0: शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे। आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
2: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है। आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी जी
2: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है,
0: जी
2: उस लेवल पे करना है। वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
0: शुरू
2: आती
0: हो
2: है,
0: जाती है जी।
2: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर,
0: वेरी गुड डांसर,
2: वेरी ग्रेसफुल।
0: यस
2: उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे।
0: जी,
2: और
0: वो भी
2: कमल
0: बहुत
2: मास्टर जी
0: अच्छे,
2: बहुत कमाल,
0: बहुत
2: उन्होंने
0: जी
2: एक ट्रेंड, जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था,
0: जी
2: भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का
0: वो
2: स्टेप
0: सब
2: था,
0: कमल जी का
2: वो
0: दिया होगा।
2: कमल
0: जी
2: जी
0: जी
2: उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी,
0: जी
2: उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
0: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही
2: बिल्कुल,
0: है।
2: वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे
0: हाँ
2: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी। और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
0: क्या डायलॉग
2: हाँ,
0: है।
2: मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती।
0: जी
2: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
0: जी
2: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी
0: बिल्कुल
2: जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
0: आगे के
2: इसलिए
0: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
2: बिल्कुल
0: फीमेल वाले
2: अदायगी
0: एक्सप्रेशंस
2: मुझसे
0: आप ही
2: मिलेगी।
0: लोगे।
2: डुएट सॉन्ग
0: बिल्कुल
2: है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
0: हाँ,
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं
0: क्या
2: असिस्टेंट थी
0: जी
2: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
0: हाँ
2: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना
0: जी
2: और करके दिखाना।
0: जी
2: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के,
0: जी
2: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ, गणेश मास्टर जी ने की है।
0: और गणेश
2: और उन
0: मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
2: शबीना खान। तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये
0: मैं
2: जो
0: ही सिखा रही थी
2: मैं
0: उस
2: ही,
0: समय।
2: हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं,
0: तो
2: यू नो।
0: फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इराका जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर

0: होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया
1: मैं
0: मैंने
1: मजेदार
0: असिस्टेंट
1: बताऊं, थोड़े
0: कोरियोग्राफ।
1: से लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
0: जी
1: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे दे पीछे
0: क्या
1: पीछे
0: बढ़िया
1: पीछे
0: गाना
1: पीछे,
0: है
1: उसमें मैं असिस्टेंट थी। और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
0: जी
1: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती
0: नहीं,
1: थी
0: आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से
1: उस वक्त
0: तो
1: काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
0: जी
1: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
0: बिल्कुल, ये
1: आपकी
0: गाना
1: मर्जी
0: हम
1: है।
0: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी
1: हाँ
0: ने
1: जी,
0: गाया हुआ
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: गाना है और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
1: बिल्कुल
0: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शमीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं और जो रानी मुखर्जी हैं उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
1: ठीक है।

0: तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं।
0: जी
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूं
0: हाँ
1: और अरबाज खान को
0: हाँ
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है,
0: अच्छा
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी वहां
0: ऐसा
1: पे।
0: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
1: हाँ आप
0: गाने में।
1: देखिए,
0: जी
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग ब्रदर, हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं
1: मैं
0: बट
1: हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है।
0: ओ
1: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या, बहुत लोगों को लगता था। इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट,
0: जी
1: पर्सनालिटी,
0: जी जी
1: बाल, काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
0: जी
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फें तेरी
0: ब्यूटीफुल
1: काली
0: सॉन्ग।
1: काली,
0: यस
1: मैं असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो जाते थे,
0: अच्छा
1: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो
1: का
0: मटकी
1: मोह,
0: फोड़ने वाला
1: मटकी
0: गाना।
1: फोड़ने वाला गाना,
0: जी
1: वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहां पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
0: जी
1: तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए,
1: हाँ
0: मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ
1: बिल्कुल
0: गए।
1: बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी, उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है, या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
0: जी
1: चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
0: जी
1: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: मेरे
0: बात है।
1: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,
0: हाँ
1: कॉलेज जाना शुरू किया,
0: ओके
1: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की
0: आप
1: पढ़ाई भी।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ
1: हाँ तो क्योंकि मैं
0: मेडिकल
1: कोरियोग्राफर
0: की पढ़ाई
1: कभी
0: कर रहे थे।
1: बनना नहीं चाह रही थी, मैंने
0: जी
1: काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है,
0: जी
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की, काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: पैसों की भी जरूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: हारे तो कभी नहीं थे।
1: कभी हारे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं, कि कोई
0: अच्छा
1: बात नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
0: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा,
1: हाँ
0: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे
1: बहुत
0: बायोटेक्निकल
1: कुछ
0: नेम्स और बहुत सारी
1: बहुत
0: चीजें
1: कुछ।
0: होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
1: तो
0: डर
1: ऐसा
0: तो
1: होता
0: मुझसे
1: था कि
0: लगता है आपने
1: असिस्टेंट
0: पढ़ा।
1: डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी,
0: ये
1: और
0: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
1: बिल्कुल यही
0: सकते।
1: मैं चाहती थी कि आपके
0: जी,
1: जरिए पता
0: तो
1: चले
0: हमारे
1: लोगों को।
0: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की,
1: जी
0: बायो। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स,
1: बिल्कुल
0: ये तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना याद करना, फिजिक्स
1: बिल्कुल
0: की मैथ्स भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
0: बट कॉमर्स भी इजी नहीं
1: हाँ, बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
0: जी,
1: की, मतलब मैं
0: क्या
1: खुद,
0: बात है,
1: हाँ,
0: बुककीपिंग
1: पढ़ाई में
0: ये।
1: अच्छी। हाँ, तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो।
2: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: आगे जाके
0: क्या बात है,
1: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
0: सुकून की नींद नहीं, पेट
1: बिल्कुल,
0: भर के भूख नहीं,
1: बिल्कुल,
0: और एक अलग बेचैनी,
1: ये बिल्कुल। मैं अपने
0: इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम करने के लिए लग जाना है।
1: 4 घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए।
0: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
1: बिल्कुल
0: कुछ जाग रहा है।
1: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है हमेशा।
0: जी,
1: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
0: इतना होने के बाद
1: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर,
0: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए।
1: बिल्कुल। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि ये कब हुआ जब कोरियोग्राफी शुरू की।
0: जी।
1: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग

0: लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ। अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है, दिशा बदलनी चाहिए। तो
1: जी
0: मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी
0: अब मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्या
0: जी।
1: बात है।
0: तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया, उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है, लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था, लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या रॉय गाना कर रही है, हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी?
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था,
0: हाँ,
1: शबीना आएगी
0: शबीना
1: ना
0: है
1: सिखाने
0: ना?
1: के लिए। हाँ
0: तो उन्होंने पूछा, शबीना है ना? हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का। तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते हैं वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर
0: हाँ
1: जाके वीजा लगवा रहे
0: वीजा। और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम? अनिल कपूर बोल रहा हूँ, शबीना। मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता।
1: क्या बात है।
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी
1: हाँ,
0: कर
1: क्या
0: रही थी,
1: खूबसूरत गाना है।
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही
1: जी
0: रही थी।
1: जी जी
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है, बस
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था, इसलिए मैंने सीखा ही नहीं, मुझे

0: एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है. ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू. ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म. अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी.
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ, तुम्हें बता देगा, एक गाना करो, मजा आया तो आगे करना.
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था, पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ,
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल.
1: अच्छा किया था अंतरा वाली जी ने,
0: आहा, आहा,
1: बढ़िया किया था।
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना. ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है. मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना. मैंने किया, वो गाना था 1 2 3 और हमको आज कल है इंतजार,
1: वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का.
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने.
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है. सच अ
1: सीखेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज.
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई. उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है. इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ. और जब पहला गाना एडिट
1: कोई
0: करके, ये
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: सर
1: इसमें।
0: तुमने यही सीखना है और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो.
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट. एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं.
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है. जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरी, ये मैंने क्रिएट किया है.
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है. मम्मी बोले करो बेटा.
1: एक्चुअली मैं, जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो.
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल.
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं,
1: हाँ
0: एडिटिंग तक.
1: हाँ
0: पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं.
1: जी
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं.
1: जी
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो. तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे. फिर जिंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई.
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट, आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा, और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जितनी भी जाएगी
0: तो
1: वो।
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है,
1: जी
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म
1: हाय
0: से है,
1: हाय,
0: गाना है जलते दिए.
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी.
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब
1: जी
0: भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है.
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं
0: जी
1: और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहां से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि
0: बिल्कुल.
1: कैसे वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
0: सो
1: सुना
0: अगर
1: दें।
0: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद
0: हिंदुस्तान
1: में
0: के
1: देखेंगे भी।
0: देखेंगे और सुनेंगे,
1: जी
0: तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए,
1: जी
0: तो हमारे जो सूरज बड़जात्या जी है उनको
1: जी
0: तो सब जानते हैं,
1: जी
0: सबके दिलों की धड़कन है वो.
1: जी
0: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी.
1: बिल्कुल, बहुत
0: उनसे मैंने,
1: सरल
0: वो
1: है।
0: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ.
1: जी
0: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
1: खुद जलाएंगे यानी,
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो
1: हाँ
0: आप
1: वो,
0: ऑन करके डाल
1: हाँ
0: दो.
1: एलईडी वाले।
0: ही
1: जी
0: सेड नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: असली दिए
0: दिए
1: जलाएं।
0: दिख रहे हैं हम
1: हाँ
0: जलाएंगे, भले 50 100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है इस
1: ये बढ़
0: गाने
1: जाते
0: की।
1: हैं इसका ये काम ऐसा
0: हाँ, तो
1: होता
0: उसमें
1: है,
0: दिए
1: ये
0: जलाने में मैं
1: ऑथेंटिसिटी
0: भी होती
1: होती
0: थी,
1: है।
0: मेरे असिस्टेंट उनके

0: असिस्टेंट वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं
1: जी,
0: आपने जो सवाल किया साइड में
1: जल रहे हैं,
0: जहां जहां वो जा रही है
1: हाँ
0: वो दिए जल रहे
1: जी
0: हैं, और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी
1: हाँ, और वो
0: तो
1: बहुत
0: वो चलकर
1: लाइट नेट की
0: हाँ,
1: साड़ी है वो
0: तो
1: जी
0: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
0: हाँ
1: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल
0: नहीं,
1: रही है और
0: वो
1: वो
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के
1: जी
0: कैसा लगे कि है बहुत करीब,
1: जी
0: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले वो हमारे सेट पे होते हैं,
1: जी
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता, फिल्म
1: डॉक्टर्स होते
0: सेट
1: हैं, एम्बुलेंस
0: डॉक्टर्स
1: होती
0: होते
1: है
0: हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है।
1: जी
0: जैसे लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
1: हाँ
0: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
1: हाँ
0: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
1: इक्विपमेंट्स
0: सेफ्टी
1: और सेफ्टी नॉर्म्स के
0: बहुत
1: साथ में
0: जरूरी है,
1: ही
0: बहुत
1: काम करना
0: जरूरी।
1: चाहिए।
0: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
1: बहुत
0: कोमलता
1: रिच
0: से
1: सॉन्ग है,
0: दर्शाया गया,
1: बहुत प्यारा, बहुत
0: बहुत
1: सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
0: बिल्कुल
1: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना, जलते दिए आप सबके लिए।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो है, एक्ट्रेस जो है, अभिनेत्री जो है, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं बात, तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बता दूं।
0: जी,
1: रेखा जी
0: है
1: हमारी मुड़ाव जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंद्र कुमार जी की
0: जी।
1: मैं नई कोरियोग्राफर थी
0: जी।
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही खूबसूरत,
1: आज भी उतनी ग्रेसफुल,
0: 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी,
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की
0: जी,
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और
0: जी।
1: बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया।
0: आह क्या बात है।
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर, इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है।
0: अच्छा,
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है।
0: अच्छा,
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नजाकत, यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
0: यस,
1: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नजाकत और आपका ग्रेस पता चलता
0: इसे
1: है।
0: अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके निकल जाना।
1: बिल्कुल, आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी, इसे कहते हैं अदायगी। जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है, सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी,
0: बिल्कुल,
1: और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर, शी वर्कड रियली हार्ड। रात को 2-2 बजे तक रिहर्सल किया, और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरा के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ। जो जलते दिए में आप देखिए,
0: के साथ में
1: बिल्कुल
0: डांस किया जी।
1: शकुंतला बन गई थी वो, बिल्कुल उस गाने में
0: ऐसा ही,
1: यही
0: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वाज वेरी गुड,
1: वेरी ग्रेसफुल,
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार।
1: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ शर्वरी,
0: अच्छा,
1: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
0: सही बात है, कहेंगे लोग।
1: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है, वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
0: इनके कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए, ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में, तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है?
1: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ
0: जी।
1: उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
0: एक जरा जरा
1: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे थे
0: जी।
1: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी। शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, ये होता है अचीवमेंट। और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
0: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को उन्होंने गुरु मान के उसके जैसा
1: उन्होंने सरोज जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया
0: जी।
1: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बजाजिया की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन
0: जी।
1: उन्होंने निभाया उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जो गाना है
0: जी।
1: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया
0: जी,
1: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड कि मुझे चेंज करना है। शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है
0: जी।
1: और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है वैसे करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बजातिया जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है चलना है, सूरज जी ने कहा सोनम मुझे यही चाहिए, तो आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
0: जी,
1: तो एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
0: हाँ,
1: और सलमान खान उन्होंने जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है वो, सगा भाई है
0: जी,
1: वो भी मेरे साथ रह रहे के, वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। सूरज जी ने बोला के शबीना।
0: जी
1: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा।
0: हाँ,
1: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
0: और उनको वहां तक लाना पड़ता
1: लाना
0: है,
1: पड़ेगा
0: मेहनत
1: आपको
0: करनी पड़ती है।
1: उनके कैरेक्टर को मैं करके दिखाती हूँ। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि उस कैरेक्टर को जी पाऊं, उसकी तरह बन पाऊं, उसके जैसे लचक लाऊं, उसके जैसे, वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
0: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
1: सारे
0: इनके
1: एचओडीज
0: असिस्टेंट्स, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
1: तभी
0: किरदार को
1: प्रेम
0: जी रहे
1: रतन
0: होते
1: धन
0: हैं।
1: पायो बनी है। मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
0: जी
1: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
0: जी
1: इसका कोई भी कोना कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
0: जी
1: जो
0: बिल्कुल
1: सोनम का कैरेक्टर
0: जी।
1: है, फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
0: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
1: उनको भी
0: बीच में
1: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है,
0: जी।
1: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
0: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है, पर शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे, वहां तक
1: बिल्कुल
0: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे
1: बिल्कुल
0: थे, तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
1: उफ प्लीज
0: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत।

0: मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
1: बिल्कुल।
0: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है और क्या फिल्माया गया है।
1: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ
0: हाँ
1: इस
0: हाँ
1: पर,
0: बिल्कुल
1: अगर
0: जी,
1: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरे इस
0: आपके
1: इंटरव्यू
0: नजरिए
1: के
0: से।
1: बाद अगर आप वापस से जितने आप पे शो होता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए, वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लज्जा गले देखती जरूर हूँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर,
0: हाँ
1: जंगल में वो गाना शूट हो
0: हाँ
1: रहा है और दो लोग
0: लाइट
1: हैं,
0: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
1: बिल्कुल
0: है जी,
1: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
0: कुछ नहीं है
1: और दोनों हर फ्रेम में है,
0: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
1: लाइट्स
0: गई
1: भी
0: हैं
1: नहीं है,
0: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
1: तो
0: जंगल का
1: उसको
0: है।
1: वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
0: जी
1: किया है।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
0: तो ऐसे
1: कोरियोग्राफर एक
0: गानों में भी
1: म्यूज,
0: कोरियोग्राफर का काम
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: सिर्फ
1: होता है,
0: नाचने के लिए नहीं बाकी।
1: बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
0: जी
1: और आप फिर ये गाना देखिए, आई
0: जी
1: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
0: जी
1: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
0: जी
1: तो बींग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
0: जी
1: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
0: की मोमेंट हो।
1: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे जो लग जा गले में हुआ है।
0: जी
1: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और
0: अरे
1: मनोज कुमार जी,
0: बहुत खूबसूरत गीत है।
1: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में। इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
0: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: ऊपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
5: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, माइनस 10। मेरे पास एक ही कोट था,

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमासोनी का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं आप सभी? हम बहुत अच्छे हैं और यही दुआएं करते हैं कि आप भी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और कुछ न कुछ सदकार्यों में लगे रहें। दोस्तों, आज है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और आज का दिन जो है हमें उस इतिहास की याद दिलाता है जिसे हमारे देश के वीरों ने अपने खून और बलिदान से लिखा। आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, जिस धरती पर स्वतंत्र होकर जीवन जी रहे हैं, उसके पीछे अनगिनत वीरों का त्याग, संघर्ष और बलिदान छिपा है। वतन की मिट्टी को नमन हमारा, शहीदों के बलिदान को सलाम हमारा, जिन्होंने हंस कर दे दी अपनी जान, उन वीरों से रोशन है हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह देशवासियों की एकता, साहस, आत्मसम्मान और आज़ादी की प्रबल इच्छा की कहानी थी। श्रोताओं, भारत लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। अंग्रेजों ने हमारे देश के संसाधनों का शोषण किया और भारतीयों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। धीरे धीरे देशवासियों के मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष

संतोष बढ़ा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो इतिहास में, भारत के इतिहास में साहस और वीरता की मिसाल बन गया। उन्होंने अपने अदम्य साहस से यह संदेश दिया कि देश की बेटियां भी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान से पीछे हटने से नहीं डरती। साथ ही साथ श्रोताओं, समय के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया रूप आया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और देश के आम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। असहयोग आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन भावना को और अधिक इन आंदोलनों से मजबूत किया गया। सन 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का ये एक महत्वपूर्ण चरण था। गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का आह्वान दिया, एक स्लोगन दिया, करो या मरो। इस संघर्ष में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी और उषा मेहता जैसी अनेक महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान के बिना भी अधूरी है। इन वीरों ने अपने जीवन की चिंता किए बिना भी देश की आज़ादी को सबसे ऊपर रखा। इन्होंने हमें सिखाया कि मातृभूमि के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। आखिरकार वर्षों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। देश ने आज़ादी की पहली सुबह देखी और लाल किले पर तिरंगा शान से लहराया गया।

श्रोताओं, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। युवा केवल देश का भविष्य नहीं होते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वे देश के वर्तमान को भी बदलने का साहस रखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी युवाओं ने ऐसी ही अद्भुत भूमिका निभाई। जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब अनेक युवाओं ने अपने सुनहरे भविष्य, सुख सुविधाओं और यहाँ तक कि अपनी जीवन को भी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया था। छोटी उम्र थी, मगर हौसले आसमान से ऊंचे थे। देश के लिए मिटने वाले ये नौजवान कितने सच्चे थे। हंसते हंसते जिन्होंने दे दी अपनी जान, उन वीर युवाओं को हम सब करते हैं शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। जी हाँ दोस्तों।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। इसमें आज सबसे पहले सुनते हैं अनवर हुसैन की पसंद का ये गाना, जिसे हमने लिया है महबूब की मेहंदी फिल्म से। अनवर हुसैन है बी आर मिर्धा कॉलेज से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गुगरियाली गांव से भंवर सिंह भाटी की पसंद का ये गाना, जिसे लिया है कुदरत का कानून फिल्म से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं जिसे पसंद किया है आरिफा ने, छावंटा कला नागौर से। इन्होंने पसंद किया है धर्मकांटा फिल्म का ये गाना।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। और अब लीजिए सुनिए सीताराम जी, जिन्होंने हमें फोन किया ऊंट वालिया गांव से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म महेंद्र सिंह धोनी का ये गाना, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम में चांद मोहम्मद ने ये गाना पसंद किया है जो कि है फिल्म दोस्ताना का, और चांद मोहम्मद जी रहते हैं अजमेरी गेट नागौर, तो इनकी पसंद का ये गाना सुनिए।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं इकबाल सिंदल जी की पसंद का ये गाना, और ये रहते हैं अजमेरी गेट नागौर। इन्होंने पसंद किया है नगीना फिल्म का ये गाना, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पे ये गाना।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम में मोहम्मद हुसैन की पसंद का ये गाना, जो कि है दिल है कि मानता नहीं से। और मोहम्मद हुसैन ने हमें फ़ोन किया गांधी चौक नागौर से।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इसमें हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें फोन किया, जो कि हैं लोहारपुरा से नियाज पेंटर, मोहम्मदपुरा से मुन्ने खां, राठौड़ी कुआ से सरस्वती, नया दरवाजा से कोमल और श्रीराम कॉलोनी नागौर से नंदनी जोशी ने हमें फ़ोन किया और अपनी पसंद का गाना सुनने का अनुरोध किया। वहीं इंदौखली से केसर सिंह, युवराज सांधू और इनके साथियों ने हमें फ़ोन पर अपनी पसंद का गाना सुनने का अनुरोध किया। साथ ही साथ कुंभाराम चावला शास्त्री नगर नागौर से भी गाना सुनना चाह रहे थे। तो श्रोताओं, फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के साथ ही युवाणी कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी दोस्त रमा सोनी को इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेरों दुआएं लेते रहिए, इसी कामना के साथ नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम पणिहारी।

चाहे कितनी ही मुश्किलां आवे, हिम्मत वाला मन कदे भी हार नहीं मान्या करे। उम्मीद री एक किरण साथे हुए तो अंधारों भी उजास में बदल जावे। ये प्यारी सी बात के साथ मैं हाजिर हूँ थाकी सहेली सखी धीरज लालनेचा आपके मनपसंद कार्यक्रम पणिहारी में। बहना, नारी को जो को जीवन हुआ करे कितो ज़्यादा अनोखो हुए है ना। नारी अलग अलग रूप के मायने परिवार में हुए और आपरी पूरी जिम्मेदारी निभाया करे है। एक नारी जीवन रे हर पायदान पर आपकी भूमिका निभावे। पहला बेटी के रूप में, पछे बाप बहन बन आपके भाई ने लाड लडावे है, और आपरे घर ने छोड़ एक नयो घर के मायने जावे तो बाप बहू के रूप के मायने आपरी पूरी जिम्मेदारी निभावे है। बहना, जद नारी इतनी सारी जिम्मेदारियां निभावे है और घर ने संभाले है, लेकिन बात सोचो एक इंसान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे है। मतलब पूरे परिवार के मायने किने काई चीज चाहिए है, किरी काई जरूरत है ना, हर एक चीज़ को बात ध्यान रखे है। मतलब कि आपके दादो सा ने काई खाणो है, मम्मी ने काई पसंद है, सब चीज़ को बा पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखे, लेकिन एक इंसान के बारे में बा भूल ही जावे है और ना ही भी की सेहत को भी ध्यान रखे। अब आप ही सोचो वो इंसान है कौन। दिमाग माते जोर डाल रही हो ना, लेकिन समझ नहीं आ रही हो है। बात तो हो थे खुद ही हो कि नहीं। मैंने आपा खुद रे बारे में इतना नहीं सोचा। हाँ, और

खुद ने तो आपा मतलब कि लारे रखा हाँ और खुद ने समझा भी कमजोर। तो बहना इतनी जिम्मेदारियां संभालन वालों इंसान कमजोर किया हो सके है, नहीं हो सके ना। तो देखो बहना, जब दूसरा रे दुखा के मायने सबेरे ऊँसू साथे खड़ी रहे है, बीक मायने बिने हिम्मत देवे, दुख हुए सुख हुए हमेशा साथे रहे, हारन नहीं देवे है, और तो खुद ने कमजोर किया माने है। बहना नारी जकी है बा आंसू पीर भी हंसिया करे है, दुख में भी मुस्कावे है, और टूटा दिला ने जोड़ जोड़ कर घर आंगन महकावे है। बहना नारी कमजोर कोनी है, आपाने मायने जकी अपार शक्ति है बा छुपियोड़ी है, तो आपाने बा शक्ति पहचानन की जरूरत है। बहना बहना नारी काई है कि मतलब हर बात माते बा सोचे है कि मारे मायने इतनी क्षमता नहीं होवेला, कोई भी काम बा करण उसू पहला डरन डरनो स्टार्ट कर देवे है। क्यों? क्योंकि बिने विश्वास खुद माते नहीं हुए जद ही आ समस्या आवे है। बहना तो बहना आपने डरनो बिल्कुल नहीं है, जद आप दूसरा को विश्वास ने टूटन नहीं दो तो खुद का विश्वास ने किया टूटन दे सको हो। बहना खुद के मायने वो विश्वास धरो, आ हिम्मत राखो, और खुद ने ही आ बात कहो कि मैं कमजोर कोनी, मैं भी वो काम कर सकू हूँ और आपरी मंजिल जरूर पा सकू हूँ। बहना रास्ता में परेशानियां तो घनी आवेला, लेकिन सोचो कि मैं हारूला बिल्कुल नहीं। गिरनो कोई हार कोनी है बहना, गिर कर दोबारा उठनो ही तो असली हिम्मत हुआ करे है। बहना आपरी आप अगर पढ़ाई पूरी नहीं करी हो तो आप कई बार यान भी सोचो हो कि अब मैं पढ़र काई करूँला, लेकिन देखो बहना पढ़ाई जकी है कितनी ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा सु आत्मविश्वास आवे, सही गलत री समझ जकी विकसित हुए, और दूसरी बात बहना जका भी नारी के का अधिकार है ना, तो वे अधिकार ने जानन की जकी समझ है आ भी विकसित हुए, दुनिया ने समझन रो नजरियो जो है वो शिक्षा सु बिल्कुल ही बदल ही जावे है। तो देखो बहना पढ़ाई को मतलब केवल वो नहीं है कि केवल नौकरी लाग जानो है ना, ई को ना तो केवल नौकरी सु नहीं है। तो आप रे घर के मायने अगर छोटी बच्चियां हैं बहू है तो बेंकी भी पढ़ाई थाने ही पूरी करवानी है बहना, तो आपाने भी को साथ निभानो है। अगर खुदरी भी पढ़ाई आपा पूरी नहीं करी है तो आपाने भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो देखो बहना खुद रा सपना ने भी महत्व देनी सीखो, खुद ने महत्व देनी सीखो, और दूसरी बात बहना अगर आपा खुद ने महत्व देवा जदी तो आपा आत्मनिर्भर बना ला है ना। तो आत्मनिर्भर बनन की कोशिश आपा ने करनी चाहिए। हुनर तो कोई देखो बहना कोई छोटो मोटो नहीं हुआ करे, हुनर तो केवल हुनर हुआ करे है। तो बहना नारी केवल त्याग रो नाम ही कोनी, नारी केवल सहनशीलता रो नाम ही नहीं है, बल्कि नारी है हिम्मत और आत्मविश्वास ने समर्पित। तो बहना ये हुई अपनी बात, और अब थाने लेर चाला गीतारी दुनिया में और सुनावा वो प्यारो सु गीत।

बहना, सावन रो महीनों चाल रही है तो वाकई में मौसम की तो बढ़िया लागे है ना। ठंडो ठंडो मौसम हो जावे क्योंकि बरसात हुआ है और प्रकृति भी देखो पूरी जठीने नजर घुमावा हरी भरी नजर आवे है तो मन भी कितो सुहावणो हो जावे है। और देखो बेना एड़ो मौसम जो को है वो कितो चोखो लागे है और जद दिन की शुरुआत हुए जदे भी तो आप देखो एड़ो ही मौसम हुए और बी टाइम भी आपने चोखो लागे कि आपा सुबह सुबह उठ और घूमण जावा और प्रकृति ने कन्नू सु देखा हाँ चिड़िया की जकी चहचहाट है और सुबह सुबह पक्षियां ने दाणो निकल जावा घूमता रहे वहाँ सगड़ो राम राम करा तो मतलब वो एक माहौल है वो इसो आपने देखो शरीर तो निरोगो रेवे ही है साथे साथे मन भी घणो ही चोखो रेवे है ना क्योंकि मन बहुत खुश हो जावे है। तो अगर आपा देखो बेना कि दिन री शुरुआत भी इस तरीका सु करा कि दिन री शुरुआत जेड़ी होवेला बेना कि बेड़ो ही तो दिन रो रंग होवेला तो अगर आप दिन की शुरुआत इतनी अच्छी तरीका से करा हाँ सुबह बेगा उठा हाँ तो सही सगला जगह काम है वे सही समय मत संपन्न भी हो जावेला और अपनों जो को जीवन है वो अनुशासित रहेला व्यवस्थित रहेला। और दूसरी बात बहना अपने खुद के वास्ते भी समय मिल जावेला स्वास्थ्य वास्ते समय मिल जावेला और समय रो जो को सदुपयोग है वो भी हो जावेला। तो देखो बेना अगर इंसान समय माते नहीं उठे तो बिकी बिको जो को जीवन है ना बेना एक तो देखो वो शारीरिक रूप से निरोगो नहीं रहेला दूसरी बात वो खुद के वास्ते समय नहीं निकाल पावेला। तो सुबेरी जी की अच्छी दिनचर्या है आ राखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो दिनचर्या रो मतलब वो कोने है कि हर काम जो को है टेम देख कर करता रेवा इतनी बजे सुलेर वो काम करा इतनी बजे वो काम करा। दिनचर्या रो मतलब तो कि अलग ही है यो मतलब है कि सोनो जागनो खानो काम करनो आराम करनो और आपने लोगों वास्ते समय निकालनो ये सब के मायने एक संतुलन रखनो ही सही दिनचर्या है बहना। और ये दिनचर्या के मायने आपने समय निकालनो है आपने स्वास्थ्य वास्ते भी सुबह टहलन वास्ते भी और सुबह योग करने वास्ते भी आपने

समय निकालना चाहिए, क्योंकि देखो नियमित रूप से अगर आप शारीरिक गतिविधि करा तो शरीर चुस्त दुरुस्त भी रहेला और आप बीमारियां से भी दूर रहेला, और इसके अलावा अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आ भी मजबूत होवेला बहना। तो बहना स्वस्थ तन के मायने तो स्वस्थ मन बसे है, और स्वस्थ मन से ही जीवन के मायने सच्ची खुशी आया करे है बहना। तो बहना आ तो हुई ती प्यारी सी बात, और अब थाने लेर चाला गीतारी दुनिया में सुनावा ओ प्यारो सी गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी, FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है।

0: सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज़ हमने किया फिल्म धनवान से और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने और इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने।
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म अनुराग से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। और आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अब्दुल गनी की गाई ये रचना।

श्रोताओं, ये भक्ति रचना, ये लोकगीत आप सुन रहे हैं दयाराम के स्वर में, कार्यक्रम माटी के स्वर के तहत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम में दयाराम की गाया लोकगीत। FMN 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। सोशल मीडिया के युग में विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने से बचने को कहा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार। पिछले 12 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 400% बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मॉनसून सक्रिय, कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। श्री मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर की चुनौतियां अलग है, हालांकि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन सहित अन्य क्षेत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। युवाओं की आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में नजर आने वाले विकर्षणों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में भारत ने 300 गीगा

0: वाट का आंकड़ा पार कर लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की बढ़ोतरी हुई है। श्री जोशी ने कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का ये आंकड़ा बताता है कि भारत स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल भविष्य के निर्माण में वैश्विक प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने में अधिवक्ताओं, विधि अधिकारियों और लोक अभियोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सशक्त न्याय व्यवस्था की आधारशिला है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर विधि और विधिक कार्य विभाग की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में विधिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार कानून और न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विधिक क्षेत्र से जुड़े सभी कार्मिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
1: हम सभी जानते हैं कि हमारे लोक अभियोजकों का न्याय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, कानून का शासन मजबूत हो। इस दिशा में आप सभी का योगदान, संवेदनशीलता, प्रभावी न्याय व्यवस्था मिले।
0: मुख्यमंत्री निवास पर इसी समय विभिन्न जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्यों की ओर से धन्यवाद और आभार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत कल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में यह रैली निकाली जाएगी। अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर यह रैली बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि रैली के निर्धारित मार्ग पर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। उधर सभी जिलों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में बाड़मेर में तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली जाएगी। उधर जालौर में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए नागरिकों में देशभक्ति का संचार किया जाएगा। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो स्वाधीनता संग्राम का ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बना। इसने देश की आजादी की लड़ाई को नई दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी के करो और मरो के आह्वान ने देश भर के लाखों भारतीयों को एकजुट करने की प्रेरणा दी। ये आंदोलन आजादी की लड़ाई में जन जन का आंदोलन बना। इस आंदोलन की वर्षगांठ सिर्फ इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन महान स्वाधीनता सेनानियों के आदर्शों को भी आत्मसात करने का समय है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। राज्यसभा में कल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी में 100 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री बिरला ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत देश दुनिया में अपनी खास पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि विरासत के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करने के संकल्प के साथ बूंदी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आधुनिकता और विरासत के समन्वय के साथ बूंदी में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने खेती किसानी और उससे जुड़े कारोबार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने युवाओं से कृषि को केवल परंपरागत व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि इसे आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से जोड़कर सशक्त बनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में

0: बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक, अनुसंधान, स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग सहित व्यापक अवसर मौजूद हैं। युवा इन्हें पहचान कर कृषि को उद्यमिता से जोड़ सकते हैं। इस मौके पर श्री बागड़े ने एग्री विजन स्मारिका का भी विमोचन किया। राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रम कल्याण संगठन की प्रशासक रश्मि रेखा ने बताया कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को 6,000 रुपये तथा प्रोफेशनल डिग्री के विद्यार्थियों को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र 31 अगस्त तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1: बीड़ी श्रमिकों और चूना पत्थर डोलोमाइट खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू हो गई है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते समय यह होता था कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलती थी। इस बार ऐसा है कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उनको किसी और विभाग से मिल रही है तो भी श्रम कल्याण संगठन की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक अधिकतर स्थानों पर मॉनसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी दौरान पूर्वी भागों में 1-2 जगह भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं।
2: देखिए, पिछले 2 दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
0: आज अजमेर, किशनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं चूरू के सारदुलपुर और धौलपुर के राजाखेड़ा में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। डांग क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से पार्वती नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई है। भरतपुर के बंद बारेठा बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर डाकघर ने राखी से रक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बहनें सीमा पर तैनात जवानों को राखी और सम्मान पत्र भेज सकेंगी। पाली डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि कई जवान रक्षाबंधन पर छुट्टी के कारण घर नहीं आ पाते। ऐसे में बहनें डाक के माध्यम से उन्हें राखी भेजकर अपना स्नेह और सम्मान पहुंचा सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। सोशल मीडिया के युग में विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने से बचने को कहा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार। पिछले 12 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 400% बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मॉनसून सक्रिय, कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। श्रावण मास के चलते इन दिनों जिले का माहौल धार्मिक बना हुआ है। विभिन्न शिवालयों में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध नया महादेव मंदिर में नाव महोत्सव आयोजित किया गया। इसके तहत सुबह मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठानों के बाद शाम को नाव महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भगवान को नाव में विराजित कर श्रद्धालु नाचते गाते भजन कीर्तन कर रहे हैं। वहीं जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम, देव सोमनाथ महादेव मंदिर और भुवनेश्वर शिवालयों में भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इन दिनों मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। जिले में पिछले दिनों अच्छी बरसात हुई। आसपुर, सागवाड़ा, डूंगरपुर शहर, सीमलवाड़ा और बिचीवाड़ा क्षेत्रों में अच्छी बरसात से

0: जलाशयों में पानी की आवक भी बढ़ी। वहीं संभाग के बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बारिश की वजह से जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम की तीनों पुलिया पर पानी बहने लगा, जिस वजह से बेणेश्वर धाम पिछले दिनों टापू में तब्दील हो गया। हालांकि दो दिनों बाद पानी उतरने से फिर से आवाजाही शुरू हो गई। इन दिनों आसमान में बादल देखे जा रहे हैं और किसानों ने खरीफ की बुवाई शुरू कर दी है। अच्छी बरसात के साथ ही किसानों को बेहतर पैदावार की उम्मीद भी जगी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हाल ही में डूंगरपुर जिले के देवल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे। उन्होंने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करता है। उन्होंने किसानों, गरीबों और आदिवासी परिवारों से आयुष्मान कार्ड सहित सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। जिले में इन दिनों शहरी और ग्रामीण फॉलोअप शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। शिविरों में बिजली, पानी और सड़क से जुड़े मामलों के साथ साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टा वितरण और नामांतरण जैसे काम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर देशल दान सहित अधिकारी शिविरों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की ओर से सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को लेकर संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों और आमजन से सहयोग की अपील की। उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण ने समयबद्ध और व्यवस्थित कार्य करने पर जोर दिया। 5 अगस्त को जिला स्तरीय युवा संबल रोजगार शिविर लगाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैरिज हॉल में हुए इस शिविर में 40 से अधिक कंपनियों ने 670 युवाओं के साक्षात्कार लिए और चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 58,41,000 रुपए के ऋण भी वितरित किए गए। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत झोथरी ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास नगर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पोषाहार, मध्याह्न भोजन, पेयजल, स्वच्छता, विद्यार्थियों के नामांकन और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। बाद में पंचायत समिति में हुई बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले के सतीमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीते दिनों बालिका जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, पॉक्सो कानून, साइबर अपराध, नशे से बचाव और आत्मरक्षा की जानकारी दी। छात्राओं को डिजिटल सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, राजकॉप सिटीजन ऐप और सखी सेंटर के बारे में भी बताया गया। डूंगरपुर में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर देशल दान ने मतदान केंद्र, कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण, मतदाता सूची, परिवहन, चिकित्सा और नियंत्रण कक्ष से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 43,15,00,000 रुपए की लागत से 181 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 85 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। डूंगरपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवाना ने विकसित भारत बनावन री मजबूत बुनियाद बतायो। सोशल मीडिया रा जमाना माए विद्यार्थियां दूजाओं तुलना करनो बचपा सारू कहो। साफ ऊर्जा रा हलका माए देश 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कीनो। लारला 12 साल माए नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करन रो बूतो 400% बढ़ियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी ने विकास रा 100 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। और प्रदेश माए घन खरठोड़ा चौमासारी बिरखा। काल सगला जिला माए बिरखा सारू चेताई चियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हर पीढ़ी वारी बगतरी खास चुनौतियां और सामो करता था का राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी करे है। वे आज आईआईटी दिल्ली रा 57वां दीक्षांत समारोह में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि मौजूदा दौर री चुनौतियां न्यारी है, हालांकि देश में नुआ हलका रा विकास नौजवाना सारू नुआ मौका बन रहा है। वह कहो कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन समेत न्यारा न्यारा हलका देश ने खुद रेपाण उबो करण री दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि नौजवाना रे खुद रेपाण उबा भेवन री आ पहल विकसित भारत बनावण सारू मजबूत बुनियाद रो काम करेला।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: श्री मोदी सोशल मीडिया रा जमाना रो जिक्र करता था का कहो कि विद्यार्थियों ने तनख्वाह, नौकरी या कार्यक्षेत्र रा आधार दूजों तुलना करनो बचनो चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, लेकिन याद रखिए जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली बनावन रा हलका माए खास उपलब्धि हासिल करता था का 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कर लीनो है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वह बतायो कि लाडला 12 साल माए देश रो नवीकरणीय ऊर्जा बूतो 400% बढ़ियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि न्याय व्यवस्था ने असरदार और मजबूत बनावण माए वकीला, न्यायिक अहलकारा और लोक अभियोजकों रो खास काम है। वे आज जयपुर माए वाना रहवास माथे विधि और विधिक कार्य विभाग री ओर राखी ज्या संवाद कार्यक्रम माए न्यायिक हलकाओं जुड़िया नुमाइंदा सागे बातचीत कर रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि सरकार कानून और न्याय व्यवस्था ने असरदार बनावण सारू लगातार कोशिश कर रही है। श्री शर्मा कहो कि न्यायिक हलकाओं जुड़िया सगला कर्मचारियों रा भला रो ध्यान राखता थका वाने काम करण रो बेहतर वातावरण मुहैया करावन री कोशिश करी जा रही है।
3: हम सभी जानते हैं कि हमारे लोक अभियोजकों का न्याय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, कानून का शासन मजबूत हो। इस दिशा में आप सभी का योगदान, संवेदनशीलता, प्रभावी न्याय व्यवस्था मिले।
1: हर घर तिरंगा अभियान 2026 रातेत काल जयपुर माए राज्य स्तर री तिरंगा रैली निकाली जावेला।

आ रैली मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री अगुवाई माए अल्बर्ट हॉल नु सरूफेर बड़ी चौपट ताई चावेला। जयपुर रा जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि रैली रा गेला माथे हिफाजत और आवन जावन समेत न्यारा न्यारा इंतजाम करी चिया है। राज्य रा सगला जिला में आई हर घर तिरंगा अभियान री जोरदार तैयारियां करी जा रही है। बाड़मेर में तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली जावेला। जालौर में आई भांत भांत रा कार्यक्रम रे जरिए जनता में देशभक्ति री भावना जगाई जावेला। देश आज भारत छोड़ो आंदोलन री 84वीं वर्षगांठ मना रियो है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी री अगुवाई में शुरू करी जियो ओ आंदोलन देश री आजादी री लड़ाई रो ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनियो। महात्मा गांधी रा करो या मरो रोनारो देश भर रा लाखां लोगां ने एकजुट फेवन री सीख दीनी। ओ आंदोलन आजादी री लड़ाई में जनता रो आंदोलन बनियो। भारत छोड़ो आंदोलन री वर्षगांठ रा सिलसिला में राज्यसभा में काल स्वतंत्रता सेनानिया ने श्रद्धा भाव सागर याद करी चिया। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे।

0: हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी में विकास रा 100 करोड़ रुपया रा खर्च वाला न्यारा न्यारा काम री नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। इस मौके वे कहो के हाड़ौती हलका री सांस्कृतिक विरासत देश दुनिया में खास पहचान रखे है। लोकसभा अध्यक्ष कहो के विरासत सागे विकास रा नुआ आयाम बनावन रा संकल्प सागे बूंदी ने आगे बधायो चावेला। इसारो आधुनिकता और विरासत रा तालमेल नु बूंदी माए बुनियादी सुविधा बधाया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े खेती किसानी और वाऊ जुड़िया कारोबार ने देश री माली व्यवस्था सारू खास बतायो है। वे नौजवानों खेती ने केवल परंपरागत कारोबार रा तौर देखने री बजाय नुवी तकनीक नवाचार और उद्यमिताओं जोड़ और मजबूत बनावन बाबत कहो। राज्यपाल आज उदयपुर रा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राखी जी नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है। वे कहो के खेतीबाड़ी रा हलका में तकनीक अनुसंधान स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग समेत मोकला मौका मौजूद है। इस मौके श्री बागड़े एग्री विजन स्मारिका को विमोचन कीनो। राज्यपाल इंदिरा परिसर में हरियाणा राजस्थान अभियान रा तहत पौधोई रोप्यो। खाना माए काम करने वाला मजूरां रा बच्चा ने श्रम और रोजगार मंत्रालय री ओरों वजीफो दियो चावेला। श्रम कल्याण संगठन री प्रशासक रश्मि रेखा बतायो के आईटीआई पॉलिटेक्निक और डिग्री कोर्स रा विद्यार्थियों ने 6,000 रुपया और प्रोफेशनल डिग्री सारू पढ़ाई करने वाला ने 25,000 रुपया री मदद दी चावेला। पात्र उम्मीदवार 31 अगस्त ताई नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल माथे अर्जी दे सके है।
1: बीड़ी श्रमिकों और चूना पत्थर डोलोमाइट खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू हो गई है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते समय ये होता था कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलती थी। इस बार ऐसा है कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उनको किसी और विभाग से मिल रही है तो भी श्रम कल्याण संगठन की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी।
0: प्रदेश में आवता 3-4 दिन ताई घनखट होना चौमासारी बिरखा वेवन रो अनुमान है। मौसम विभाग काल सगला जिला सारू बिरखा रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आवता 2 दिन माए बिरखा माए बढ़ोतरी सागे भरतपुर उदयपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए मझलाऊ तेज दर्जारी बारिश हो सके है। इस दौरान प्रदेश रा उगनी हलका माए 1-2 ठौड़ जोरदार घनी जोरदार बिरखा वेवन रा आसार है।
2: देखिए पिछले 2 दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
0: इस बीच आज अजमेर और किशनगढ़ समेत कई हलका माए थोड़ी देर ताई चोखो में बरसियो। चूरू जिला रा सादुलपुर और धौलपुर जिला रा राजाखेड़ा माए काल हुई झमाझम बिरखा पाछे कई हलका माए पानी भरकियो। डांग हलका माए भया चोखा में पार्वती नदी माई पानी री आमद बध गई है। भरतपुर जिला रा बारेठा बांध माई पानी रो लेवल लगातार बध रियो है। कर्नाटक माए भी राष्ट्रीय जिम्नास्टिक होड़ माए हनुमानगढ़ जिला रा बेहरवाला गांव री कल्पना महिला चांदी रो तमगो जीत्यो है। कल्पना इनु पहली राष्ट्रीय और राज्य स्तर री होड़ा माए कई तमगा जीत चुकी है। दूजगानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाड़ला दिना ग्लास्को माए पूरा फिया राष्ट्रमंडल खेलना री मुक्केबाजी होड़ माए सोना रो तमगो जीतन वाली कोटारी अरुंधति चौधरी रा रहवास माथे पूगर वारा परिवार वाला ने शुभकामनावां दीनी। ई मौके श्री बिरला कहो के कोटा बूंदी माए अंतर्राष्ट्रीय मानका ने मुजब खेलना रा सुविधा विकसित करन री कोशिश करी जा रही है। राखी रा त्योहार रे मौके डाक विभाग री ओर राखी से रक्षा अभियान शुरू करी चियो है। इन तहत बहना सरहद माथे तैनात

0: फौजियां ने राखी अरमान पाना भेज सकेला। पालीरा डाक घर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा बतायो कि कई जवान राखी रे मौके घरा नहीं जा सके है, इन कारण बहना डाक रे जरिए वाने राखी भेजर प्रेम अरमान पूगा सके है। पाली माए राखी भेजन वाली बहना सारू डाक घर माए न्यारी खिड़की री व्यवस्था करी जी है और ऑनलाइन चुकारा रो सुबितोई मुहैया कराई चियो है। काल विश्व आदिवासी दिवस मनायो चावेला। ओ दिन आदिवासी समाज री संस्कृति परंपरा और गौरव रो उत्सव है। ओ आदिवासी अस्मिता और हकाना प्रति एकजुटता और संकल्प रो दिन है। इस साल री थीम आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा राखी जी है। आदिवासी दिवस रे मौका दौसा जिला रा नांगल प्यारी वास माए खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवाना ने विकसित भारत बनावन री मजबूत बुनियाद बताया। सोशल मीडिया रा जमाना माए विद्यार्थियां दूजाओं तुलना करण बचबा सारू कहो। साफ ऊर्जा रा हलका माए देश 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कीनो। लारला 12 साल माए नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करण रो बूतो 400% बधियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी ने विकास रा 100 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। हर प्रदेश माए घनखर ठोड़ा चौमासारी बिरखा। काल सगला जिला माए बिरखा सारू चेताई चियो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बज रहे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसान वाणी, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी सुनबावाड़ा सभी किसान भाइयों ने और सुनबावाड़ा सभी श्रोताओं ने अनीता की घनी घनी राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी घना घना राम राम सा।
7: बिल्कुल अनीता बहन, थाने और सुनबावाड़ा अपना जगह हितड़ू श्रोता है, दूर दराज गांव ढाणी रमाई ने बैठे हुआ कार्यक्रम सुने है, आप सगला ने घने मानसु प्रभु दयाल वरमारो भी राम राम सा।
6: प्रभु भाई, भाई देखो सा, अपने किसान भाई तो खेती बाड़ी करे ही छे और शुरू से अपने बड़का भी देखो करता ही आया छे, और आज आप देख भी रहा छा की तरीका से जो नई पीढ़ी छे वा खेती की किसानी से थोड़ा सो उनको लगाव छे ने जो कम हो तो दिख रही।
7: बिल्कुल सही बात कह रहा हो, देखो खेतों का मायने जहाँ चौमासा की फसलां ले लियो चाहे सियाड़ा की फसलां ले लियो, टाबरियन जहाँ कई बार आप पूछा तो भाई का गेहूं की फसल खड़ी है या जहाँ चौमासा में आप बाजरा की बात करा या तिल की बात करा मूंग की बात करा तो वो टाबरी आज का बता नहीं सके भाई आ कौन सी फसल है। तो अब बात था कि सांची है कि भाई आज को जो टाबरी है वो बनाई लिखाई में तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो खेत को और जमीन को जो ज्ञान है

0: एसिड उन रंध्रों को बंद कर देता है जिससे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं हो, तो भी ग्रोथ चेक हो जाती है। ये उपापचय की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको भी रोक देता है। ये डोरमेंसी को बढ़ाता है, इसलिए कि बीज और पौधा अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर सके। अगर अनुकूल परिस्थिति उनको मिल जाएगी तो तुरंत यह सुसुप्त अवस्था को तोड़कर जर्मिनेट हो जाएगा, पानी पूरा मिल जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे और साथ में किसान भाइयों ये वृद्धि को भी रोकता है। किस लिए रोकता है कि प्रतिकूल कंडीशन में जब पौधे को जीवित रखने के लिए अनुकूल कंडीशन नहीं है उस समय उसकी वृद्धि को ये रोक देता है तो पौधा जिंदा रह जाता है। किसान भाइयों लास्ट जो हार्मोन है अपना वो है एथिलीन। ये ऐसा हार्मोन है जो दोनों में अपन काउंट कर सकते हैं, इसको वृद्धि को बढ़ाने वाले में भी काउंट कर सकते हैं और वृद्धि को रोकने वाले में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये फलों के पकाने में सहयोग करता है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ। मौसमी के साथ में या संतरे के साथ में अगर कच्चे केले रख दिए जाए तो वो पक जाते हैं। ये क्यों पकते हैं? क्योंकि संतरे से एथिलीन गैस निकलती है, उससे केला पक जाता है
1: जी।
0: तो सीधा सा व्यवहार देश का कि कहीं तो ये फायदा कर रहा है, साथ में कहीं ये नुकसान भी करता है। नुकसान ये करता है कि सड़ाव पैदा होते हैं एथिलीन, मतलब जैसे पकता है एथिलीन ज्यादा होने से उसमें सड़ाव आ जाता है। पत्ती में अगर पकाव आ गया तो एथिलीन डेवलप होकर पत्ती झड़ जाती है। और एक इसका बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है कि मूंगफली में ये जर्मिनेशन जल्दी कर देता है, ये एथिलीन के कारण ही होता है। आलू की स्प्राउटिंग बढ़ा देता है। आलू में देखा होगा आप लोगों ने कि जगह जगह से जर्मिनेशन सा हो जाता है, उनको काटकर कंदों को ऊपर लगा देते हैं तो आलू पैदा हो जाता है। वो स्प्राउटिंग एथिलीन के कारण ही किसान भाइयों हो पाती है। पुष्परण और फलन दोनों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है। और कई जगह ये कुकुम्बर, स्पेशली कुकुम्बर की बात करूंगा मैं, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं, खीरे स्पेशली, उसमें ये मादा फूलों की संख्या बढ़ा देता है जिससे उसकी उत्पादन क्षमता और उत्पादकता बढ़ जाती है
1: जी।
0: किसान भाइयों ये पांचों हार्मोन्स हैं जो पौधों की वृद्धि भी कराते हैं, वृद्धि को रोकते भी हैं। और इनमें से एक हार्मोन ऐसा है एब्सेसिक एसिड जो कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, वो प्रकृति प्रदत्त है। बाकी के चारों हार्मोन्स को अपन लोगों ने कृत्रिम रूप से भी बना लिया है।
1: बिल्कुल, आप बड़ा विस्तार से जगह पादप वृद्धि नियामक एवं कृषि के मायने जो उपयोग है के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। ए जी बड़ा वाला और घटा वाला आगे ते बात करी, किसान भाई जब पादप वृद्धि नियामकों को प्रयोग करे तो कौन कौन सी मोटी मोटी बातें है वो ध्यान रखना चाहिए, कोई यहाँ की कोई मात्रा हुए या किस प्रकार से उनको प्रयोग करना चाहिए भी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी किसान।
0: जैसे किसान भाइयों अपन देखते हैं कि अपना फलन तो गया लेकिन वो झड़ रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं
1: जी।
0: तो अपन प्लेनोफिक्स नाम के एक हार्मोन का अपन स्प्रे करते हैं, उसकी डोज अपने को 3 ml के लगभग प्रति 15 लीटर में रखनी है। किसान भाइयों अच्छी तरह समझ लीजिएगा, 3 ml अगर अपन डालेंगे 15 लीटर में तो पत्तियों को और फलों को वो रोकेगा
1: जी।
0: और अगर अपन ने 5 ml उसको कर दी तो किसान भाइयों वो पत्तियों फलों के साथ में पत्तियों को भी नीचे गिरा देगा। इथिलीन मैंने कहा था कि दोनों काम आती है, ये रोकने के काम भी आती है और जरावस्था के लिए भी काम आती है, जरावस्था मतलब उसे झाड़ने काम भी आती है। तो इस डोज का विशेष ध्यान रखेंगे किसान भाइयों।
1: और कोई फलाने पकावा के वास्ते कौन कौन सा हार्मोन काम आवेगा?
0: पकाने के लिए केवल एथिलीन ही काम आती है जो गैसीय फॉर्म में होती है, एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में होता है।
1: और आप कई बार सुना भाई के कटिंग या लेयरिंग करे भी के मायने जड़ा को विकास करवा के वास्ते भी या कोई हार्मोन से जगह प्रयोग करे किसान भाई, तो वह कौन कौन सा है?
0: किसान भाइयों बहुत सारे लोग गुलाब की, गुड़ल की, ये बहुत सारी कटिंग होती है जो डेवलप करते हैं, लेयरिंग करते हैं, तो वहां जड़ों का विकास करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन काम में लेनी पड़ेगी
1: जी।
0: ऑक्सीजन का अगर हार्मोन का काम में लेंगे तो वहां जड़े विकास विकसित हो जाएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है ऑक्सीजन ही काम में लें।
1: और फलाने या झड़बा की जगह समस्या हुए अभी सो अगर अपन बचाना है किसान भाई की कोई समस्या आएगी तो बी के वास्ते भी कोई हार्मोन है जो काम में लियो जा सके, कहीं लियो जा सके तो कौन सो है?
0: किसान भाइयों जैसे अपन ने पूर्व में भी चर्चा की है, इथिलीन एक ऐसा ही हार्मोन है जो फलों को पकाव तक ले जाता है। इसको कृत्रिम रूप से भी अपन काम में ले सकते हैं और प्रकृति प्रदत्त भी होता है।

0: प्रकृति प्रदत्त तो प्रकृति ने दिया ही है, कृत्रिम रूप से काम मिले तो एथिलीन गैस को अपन जहां स्टोर किया है उसमें छोड़ देते हैं तो वो फल सारे पकाव पे आ जाते हैं। एक उदाहरण तो मैंने दिया कि अगर एक फल सड़ा हुआ है
1: जी,
0: उस फल के चारों तरफ फल रख दीजिए आप, वो सारे सड़ जाएंगे। क्यों सड़ जाएंगे? क्योंकि वो फल सड़ा हुआ है जो एथिलीन का गैस का रिसाव कर रहा है या एथिलीन गैस डेवलप कर रहा है, वो एथिलीन सबको पका देगी और एक अपर लिमिट तक पका देगी कि वो सब सड़न की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो एथिलीन गैस ऐसी है किसान भाइयों जिससे हम फलों को पकाव पे ले जा सकते हैं।
1: और चलता चलता कोई मोटा मोटी रूप में कोई बात छूटगी फिर किसान भाइयों तक पहुंचती करनी चाहिए।
0: किसान भाइयों ये पादप वृद्धि नियामक जो चीज है ये एक आधुनिक शब्द है, पहले अपन हार्मोन्स के नाम से जानते थे इन सबको, अब लेकिन इसको पादप वृद्धि नियामक के नाम से जानने लग गए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी अनुकूल कंडीशन में कोई क्रॉप लगाएं तो ये ध्यान रखें कि तापमान, प्रकाश, मृदा की स्थिति और हवा पानी ये एकदम प्रॉपर रहे तभी फसल लगाएं। क्योंकि पहले जब लगाते थे अपने पूर्वजों जब खेती करते थे तो वो चंद्रमाओं की कलाओं के आधार पर खेती करते थे
1: जी।
0: वो सारी कलाएं साइंटिफिक थी लेकिन अपन उन चीजों को भूल गए हैं और अपन मन में आए उसी समय सोइंग करने लग गए। मन में आए जब ही अपन बिजाई कर देते हैं तो उससे अपने को नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। तो मेरा तो किसान भाइयों यही निवेदन है कि आप जब भी सोइंग करें एक प्रॉपर समय को देखते हुए सोइंग करें, सायंकालीन सोइंग करें तो ज्यादा फायदा होता है। तो ये सारे हार्मोन्स भी काम करेंगे, अपना भाग्य भी काम करेगा और किसान सफल भी होगा
1: जी। पादप वृद्धि नियामकों का कृषि के मायने महत्व है, इस विषय पर किसान भाई और बिना अपन जानकारी दे रहा। राकेश शर्मा जी आप फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टांकरडा सु, आज अपने कार्यक्रम के मायने पधारिया और किसान भाई ने अता महत्व विषय पर जानकारी दी। तो शर्मा साहब आपको मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे।
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: प्रभु भाई बहुत ही घना घना धन्यवाद आपका, जो राकेश कुमार जी से इतनी चौकी जानकारी दिलाई। और देखो साहब बहुत सारी बात सी राकेश जी बताया भाई की तरीका से खेती किसानी में कसी बात ध्यान में राख बाड़ी चर कसी बात कौन ध्यान है राख बाड़ी। और सबसे मोटी बात यह है कि समय पर अगर आपा काम कर ला ने तो सभी चीज को समय अनुसार सही तरीका से फायदो मिले लो।
1: बिल्कुल, तो और आप... सही समय फायदा की बात करें तो अब आप कार्यक्रम ने सीधो सीधो एक मीठी सी लोक रचना की तरफ ले चला।
5: बिल्कुल साहब,

0: बिल्कुल सा भाई, देखो चौमासा को टाइम छे, यू ऐसे बढ़िया टाइम छे जो आपने पानी ने बचत करवा की सहेज बाकी सबसे सही समय छे।
1: बिल्कुल सही समय। देखो सही समय बरसात की हो रही है कि मैंने आज को जो मौसम की अगर आप बात करें भाई लोगों, थोड़ा ध्यान रहे भाई की प्रकार को मौसम रहे लो। तो भाई लोग आज जयपुर के मैंने जो अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रही और न्यूनतम तापमान है जो 25 डिग्री। और बीकानेर के मौसम की अगर आप बात करें तो लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रही है और न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जोधपुर के मायने अगर बात करें तो 35 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री। और लगभग पूरा राजस्थान का मायना या आज क्षेत्र की जगह की आप बात करें बैठे बिजली चमक बागी या बरसात होगी गरज के साथ पूरी पूरी संभावना भी रहेगी।
0: बिल्कुल सा। और देखो सा मौसम की जानकारी है बस, वो आप थोड़ी सी आपने खेती बाड़ी में सही तरीका सुसार संभाल करवो या कोई काम करवो या कोई बचाव करवो, वह सब सही समय पर कर सका छा।
1: बिल्कुल सही समय की बात करी तो देखो अपन सही समय पर अब अपन कार्यक्रम ने किसान वाणी ने विराम भी देना पड़ लो
0: जी
1: तो घड़ी सारो करण लाग रही आज का किसान वाणी कार्यक्रम को टाइम अठे ही पूरा हो रही है। तो भाई लोग थे था भाई प्रभु दयाल वर्मा
0: और अनीता ने देव इजाजत, चालान करा,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

श्रोता अभी सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमा सोनी का प्यार भरा नमस्कार। ये गाना हमने लिया है फिल्म देवदास से। इसे गाया है श्रेया घोषाल ने। इस गीत को लिखा है नुसरत ब्रदर्स ने और संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं बीवी नंबर वन फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है शंकर महादेवन और हेमा सरदेसाई ने। संगीत दिया है अनु मलिक ने और गीत लिखा है समीर ने।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए धर्मवीर फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म धरती का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आपकी कसम फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

निदेशक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई।
उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृह मंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान

0: विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा
1: मुझको देख के तन
0: नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। 1 के स्थगन के बाद दोपहर 12 सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026

0: हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: श्रोताओं, अभी आप इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम सुन रहे थे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। समय हो चला है फिल्मी गीतों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गानों को हेलो फरमाइश के कुछ सुनहरे पलों के साथ। जी हाँ, आप और हम हैं चिरमी चैनल के साथ। दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है कि खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं, खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल दिया करते हैं। दोस्तों अब आपको इंतजार होगा आपको अपने फरमाइशी गानों का, तो देखते हैं कौन है हमारे आज के हेलो फरमाइश के पहले कॉलर। हेलो फरमाइश,
1: जी मुकेश सिंह बोल रहा हूँ, समझ से बोल रहा हूँ।
0: मुकेश जी शर्मा बात कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: मुकेश जी क्या करते हैं आप?
1: मेडिकल स्टोर है।
0: मेडिकल स्टोर है आपका, बहुत अच्छी बात है, यानी आप जनता की सेवा करते हैं।
1: बिल्कुल, भगवान जी दिल का वो करते हैं और क्या।
0: जी मुकेश जी, हमारे चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: ये तो वो है ना, जिम से आते ना, ले
0: जी
1: को अनुपमा लेडीज वाला
0: जी हेलो फरमाइश कैसा लगता है मुकेश जी?
1: अच्छा लगता
0: जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: फिल्म शोले, शोले
0: जी
1: फिल्म ना,
0: जी जी
1: शोले, उस फिल्म में
0: बहुत ही प्यारा गीत है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं दामो से बात कर रहा हूँ सर, जीको से।
0: दामोदर जी बात कर रहे हैं। दामोदर जी क्या करते हैं आप?
1: मैं सर्विस जॉब करते हैं सर,
0: जी क्या जॉब करते हैं सर आप?
1: MDH में।
0: MDH में काम करते हैं, बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है। दामोदर जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने?
1: पढ़ाई लिखाई सर ज़्यादा नहीं की मैंने, 10वीं पास की है।
0: जी दामोदर जी रेडियो कब सुनते हैं फिर आप?
1: रेडियो डेली सुनता हूँ सर, सुबह
0: जी
1: 9 बजे चालू करता हूँ और रात को 10 बजे सुनता हूँ। नागौर के सब प्रोग्राम सुनता हूँ,
0: हेलो
1: खेती
0: फरमाए
1: बाड़ी,
0: जी,
1: हेलो फरमाइश, गोरबंद,
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: अनाड़ी फिल्म, अनाड़ी फिल्म, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है।
0: क्या बात है सर, बहुत ही प्यारा गीत है, उदित नारायण की आवाज है। हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रही हैं आप?
1: मैं नागौर नागौर से बोल रही हूँ, बेगम मुसरत।
0: क्या करती
1: कुछ
0: हैं मैम आप?
1: नहीं, गृह नहीं हूँ सर, घर
0: घर
1: का काम करती
0: घर का ही काम करती हैं। रेडियो सुनते
1: हूँ।
0: हैं आप?
1: हाँ हाँ सुनती हूँ ना,
0: कौन
1: सब दिन
0: कौन
1: यही काम है कि
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: एलो फरमाइश और गीत भरी कहानी जो भी ये आते हैं ये सब सुनती हूँ।
0: जी, आप कैसे सुनते हैं, मोबाइल से या फिर रेडियो लगा रखा है आपने?
1: नहीं रेडियो है सर, पहले मोबाइल से सुनती थी, अब
0: जी
1: रेडियो से सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: अच्छा, लुट जा रहे पंछी ये सुनना सर।
0: बहुत ही प्यारा गीत है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: संपत प्रजापत फ्रॉम शिवबाड़ी चौराया नागौर
0: संपत जी प्रजापत बात कर रहे हैं। सर, क्या करते हैं आप?
1: जी। मैं धार्मिक यात्राएं करवाता हूँ दूसरे लोगों का,
0: जी
1: दूसरे लोगों को यात्रा के लिए ले जाता हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन, महाकाल, गंगा सागर वगैरह।
0: क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा काम करते हैं आप।
1: और ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जो जाने नहीं करते हैं,
0: जी
1: एक राउंड करता हूँ, उसमें चार पांच पांच छह बुजुर्गों को फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाता हूँ, उनको यात्रा करवा दूँ।
0: क्या बात है सर, बहुत ही नेक काम करते हैं
1: धन्यवाद।
0: आप। संपत जी, फिर रेडियो सुनने का वक्त मिल जाता है आपको?
1: रेडियो तो हर रोज ही सुनता हूँ मैं आपका,
0: जी, चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत ही बढ़िया लगते हैं सर, तभी तो सुनते हैं,
0: जी, हेलो फरमाइश कैसा लगता है सर आपको?
1: बहुत ही बढ़िया साहब, सुपर।
0: जी संपत जी,
1: इसमें
0: बताइए
1: हमारे फरमाइश के गाने आते हैं
0: संपत जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी। आज मैं हमराज पिक्चर का मगर तुम साथ देने का वादा करो
0: क्या बात है, महेंद्र कपूर की आवाज है, हम सुनवा रहे हैं
1: जी।
0: आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाई सर, नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी। उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: राजस्थान की सबसे जो बेहतरीन जगह है वहां से बात कर रहे हैं सर?
1: जी सर, राजस्थान तो पूरा रंगीला प्रदेश है
0: जी
1: और उनमें से एक उदयपुर भी है।
0: जी मौसम कैसा है सर उदयपुर का अभी?
1: मौसम सर, बारिश नहीं आ रही है, हल्के
0: जी
1: हल्के बादल हो रहे हैं, धूप भी हल्की हल्की है
0: जी जी हमारे इधर का भी यही हाल है सर।
1: जी। पूरे राजस्थान में बारिश नहीं है अभी तो।
0: नहीं है उदयलाल जी, बताइए फिर, आप इतनी दूर से बात कर रहे हैं, रेडियो कैसे सुनते हैं आप?
1: रेडियो सर न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनते हैं।
0: साफ सुनाई देता है आपको?
1: हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है,
0: जी उदयलाल जी, चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत ही अच्छे लगते हैं सर। नागौर तो हमारा मनपसंद चैनल है और
0: जी
1: वैसे राजस्थान के सभी चैनल हमें पसंद है सर।
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है सर आपको?
1: हेलो फरमाइश तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा फेवरेट प्रोग्राम है
0: जी
1: और हमें अभी ये सुविधा हो गई है न्यूज ऑन एयर पे, तो हम देश के लगभग बहुत सारे स्टेशन पर हम हेलो फरमाइश में भाग लेते हैं
0: जी जी बहुत अच्छी बात है,
1: और
0: बताइए। हाँ
1: हेलो फरमाइश की वजह से हमारे बहुत से प्रदेश में हमारे मित्र बन गए हैं सर।
0: सही बात है सर।
1: राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी स्टेट में हमारे मित्र हैं।
0: मित्र भी है और बहुत सारे लोग आपके फैन भी है सर।
1: जी सर।
0: जी उदयलाल जी, बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: सर सावन का महीना चल रहा है तो मिलन फिल्म का गीत याद आ रहा है, मुकेश और लता जी की आवाज में, सावन का महीना पवन करे शोर।
0: बहुत ही प्यारा गीत है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का हेलो फरमाइश। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं हमारे हेलो फरमाइश के इन यादगार पलों के साथी। दोस्तों हमारे हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग की जाती है हर गुरुवार दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। हमारे आज के हेलो फरमाइश में आज हमारे साथ है तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। दोस्तों हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिन्होंने आज हमें कॉल किया, कृपया वो हमें 2 महीने के बाद कॉल करें जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सके। दोस्तों अब लेते हैं आपसे विदा, लेकिन हम और आप मिलेंगे हमारे अगले हेलो फरमाइश में। दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली समाचार संध्या के लिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
3: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरातवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
4: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल कर

0: बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी नागौर के साथ। इस समय रात्रि के ठीक 9 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम दर्द भरे गीत, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म ब्रह्मचारी से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं देवर फिल्म का ये गाना जिसे गाया है मुकेश ने, संगीत दिया है रोशन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: खुले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवियत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में स्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्वेहान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखें और अपने आप से सवाल करें कि किस से मुल्क को फायदा हो सकता है और उसकी जरूरियात पर तवज्जो दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि भारत सभी शोबों में खुद कफील बनने की सिमत काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुद किफालत की सिमत यह मुहिम एक विकसित भारत की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर शोबे में भारत की कोशिशों का तस्करा करते हुए कहा कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: उधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी IIT दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने IIT दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत पर जोर दिया है। वह आज मुंबई में सहकार नव क्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि लेन देन के फ्रॉड के मामलों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंककारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतअल्लिक जराइम से निमटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वजीर दाखिला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया, जो शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराहम।

0: करेगा।
1: आज हमारे अमरेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अमरेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: हुकूमत ने आज अहम सनअतकारों और इको निज़ाम तैयार करने वालों के साथ सिलसिलेवार कलीदी मुफाहमतनामों का ऐलान किया, जिनमें कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया, कास्ट 24 और स्टार्टअप्स इंडिया काउंसिल शामिल हैं। इन मुफाहमतनामों पर तिजारत और सनअत के सनअती और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे ने दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने मुतला किया है कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे का मकसद स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। डार्विन डायनामिक्स के साथ दस्तखत किया गया मुफाहमतनामा एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की और स्टार्टअप्स इको निज़ाम को मजबूत करेगा। वजारत ने मजीद कहा कि शराकत दारी का मकसद टायर 2 और टायर 3 और देही खितों में छोटे कारोबारों को फरोग देकर स्टार्टअप्स इंडिया पहल को वसअत देना है। सरकार ने यह वजाहत की है कि सार्फीन के लिए यूपीआई और एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सार्फीन को यूपीआई के जरिए रकम की अदायगी करते वक्त लेन देन पर किसी तरह के चार्ज का सामना नहीं करना होगा। साथ ही बेशतर कारोबारी लेन देन पर भी कोई चार्ज आयद नहीं होगा। वजारत ने कहा है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर चार्जेस का सिलसिला शुरू होता है तो इसका इतलाक एक मखसूस हद के ऊपर महदूद कारोबारी लेन देन पर ही होगा और ये बहुत मामूली शरह होगी। वजारत ने कहा है कि अदायगी और तस्फीये के निजाम से मुतालिक एक्ट में तरमीम एक ऐसा बंदोबस्त है जिसका मकसद यूपीआई के तवील मुद्दत तक पायदार रहने, तकनीकी पेशरफ्त और उभरते हुए खतरात के तनाजुर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। भारत ने अपनी माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में एक अहम संग मील हासिल किया है। मुल्क में नस्बशुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली की सलाहियत 300 गीगावाट से तजावज कर गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नई और काबिल तस्दीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने उजागर किया कि भारत की काबिल तस्दीद तवानाई की सलाहियत में गुज़िश्ता 12 बरस में 400% का इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गैर रवायती ईंधन पर मबनी नस्बशुदा बिजली की सलाहियत के 300 गीगावाट के संगमील से इस बात का इजहार होता है कि भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली मुकर्रर करदा आलमी अहदाफ के मुताबिक जारी है। जनाब जोशी ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत हुकूमत एक साफ सुथरे माहौल के लिए साजगार और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल तश्कील दे रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुल्क में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर फौरी तौर से अमल दरामद के लिए शिरोमणि अकाली दल के मुतालबे का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि सभी को एक मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए, जिसमें बराबर की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया हो। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग में यह मुतालबा किया था। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी ने एक ऐसी मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी की भी मांग की है जिसमें सभी रियासतों के लिए बराबर की नुमाइंदगी हो। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा है कि शहरियों से ये उम्मीद रखने के बजाय कि वो निजामे इंसाफ की जानिब कदम बढ़ाएंगे, इंसाफ खुद शहरियों तक पहुंचना चाहिए। वह आज इंदौर में कानूनी खिदमात से मुतालिक कौमी अथॉरिटी की मगरबी जोन की इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब सूर्यकांत ने कहा कि इंसाफ तक बामकसद रसाई का तकाजा है कि कानूनी इदारे उन लोगों तक पहुंचें जो उनसे रुजू करने से कासिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के तीन अहम सतूनों मुजाकिरात, अजमत और शमूलियत से मसावियाना इंसाफ के आईनी वादे के लिए अमली माने मैसर होता है।
2: मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यायपालिका को चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, मैंने आज कहा है कि हम

0: जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, एक हमारी वहाँ पर बहन नर्स के साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, कोई डॉक्टर है, तो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को उसको जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, ऐसी ही भावना एक हमारे यहाँ पे न्यायिक मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा जो अधिकार है जिससे मुझे वंचित किया गया है वो अधिकार मुझे मिलेगा।
1: झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और दीगर मसाबिकती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जबकि रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के दरमियान बातचीत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सुप्रीम कोर्ट में एक उजरदारी दाखिल की गई है, जिसमें 14वें जेपीएससी इब्तदाई इम्तिहान को मुबैना बेसाब्तगियों की वजह से मनसूख किए जाने और उसे दोबारा कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई दिनों से एहतजाज कर रहे तलबा मुसलसल अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। मुजाहरीन का कहना है कि सिर्फ लफ्जी यकीन दहानी काफी नहीं है और यह मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक पुख्ता नतायज बरामद नहीं होते। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के साथ अपनी बातचीत भी तेज कर दी है। उन्होंने तलबा उम्मीदवारों, वालदेन और समाजी कारकुनों से 10 अगस्त को मुजवजा असेंबली घेराव में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की, ताहम इंतजामिया ने एहतजाज के मकाम के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ्फुज और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ्फुज़ करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का एयादा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पजिश्कियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय मौसमियाती महकमे आईएमडी ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली के हिस्सों में शदीद बारिश हुई। आईएमडी ने कल सुबह कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। असान में कल कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्यूहान से होगा। अश्मिता सेमीफाइनल में अपनी हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में पहुंची हैं, जबकि क्यूहान ने दूसरे सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया की जिकिम को शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवियत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्यूहान से होगा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉगमा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहाँ वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम् संवदध्वम् समवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई। जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्यायसंगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है, तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
0: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
0: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं, तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं, लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार कर्सियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत कातना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेप्चा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यहीं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस कर्सियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेप्चा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर कर्सियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर्सियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
4: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
5: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेप्चा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीना तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेप्चा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
6: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेप्चा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्रपत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग पूछ करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेट्रा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तब वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका तीन नाम है, एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेट्रा था, तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है, तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्रपत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
3: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
0: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई, और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मन।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I am acting today as a hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: This is the Congress radio calling on 42.34 meter. Today we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
3: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वीएस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:49 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।